0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ हैं नीना मैथ्यू। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। चारों ओर बिखरी कन्हैया के भजनों की गूंज, मंदिरों की भव्य सजावट और माखन मिश्री की खुशबू आज के दिन को वाकई बेहद खास बना रही है। आकाशवाणी से आज दिन भर सुरों और कान्हा की बाल लीलाओं की अनूठी प्रस्तुतियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इससे संबंधित खबरें भी आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत से।

0: प्यार भरा गीत है ये। किस तरीके से कान्हा अपनी मैया से शिकायत कर रहे हैं कि राधा क्यों गोरी है और मैं क्यों काला।
1: That's right. And Farhat, the story of Krishna's birth is one of the most inspiring accounts of hope and divine protection, the way he was born and you know how he was saved throughout.
0: और इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का को एक नई दिशा देती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भगवद्गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश पल।
2: गहरी अंधियारी रात थी, मथुरा के कारागार में चहुं ओर सन्नाटा छाया था, लेकिन मान्यता है कि इसी अंधियारी रात में अपने दिव्य ज्ञान और आलोक से जगत को दीप्तमान करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। देश भर में इस पर्व पर कृष्ण भक्ति की उमंग दिखलाई पड़ती है, लेकिन मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी पर विशेष उत्साह देखने को मिलता है। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता। कभी उन्होंने माखन चोरी की मनमोहक लीलाएं की तो कभी वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ अठखेलियां करते नजर आए। उनके जीवन में साहस और कर्तव्य का संदेश भी था। माखन सी मुस्कान में प्रेम भरा संसार, बंसी की धुन कह गई प्रेम ही जग आधार। श्री कृष्ण केवल गोकुल के कान्हा ही नहीं रहे, वे आगे चलकर महाभारत के महानायक बने और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कर्म, धर्म और कर्तव्य का संदेश दिया। अंधियारा चाहे जितना सूरज आए पास, मन में कृष्ण जगाइए मिटे सभी संताप। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: और नीना गुलजार साहब भी कहते हैं कि एक बांसुरी की धुन में सदियों का इंतजार है, वो आएगा, कहेगा, सुनेगा, यही कृष्णा का करिश्मा है। और इसके साथ ही नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यो रियो ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह पावन पर्व शांति, सद्भाव और आपसी

0: भाईचारे की भावना को मजबूत करेगा।
1: Farhat, now we begin with some more national and international news, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is 4th of September 2026. India's first imaging satellite in geosynchronous orbit was successfully launched by a GSLV rocket from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the wee hours today. ISRO said that the state-of-the-art Earth Observation Spacecraft EOS-05 successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 months minutes after it lifted off from the spaceport. After the completion of a smooth 27-hour countdown, the GSLV F-17 rocket with a 2,367-kilogram payload mass began its ascent on a dot at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. The imaging satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services.
0: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: The government has constituted a 31-member joint parliamentary committee on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel to examine the amendment bill. We have a report.
2: Prominent names from Lok Sabha in the committee include Bhartruhari Mehtab, Tejasvi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harshvardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy are in the committee. Both houses of parliament on 12th August gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. With Aman Yadav, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
0: भारत ने दो और विमानों के जरिए नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। ये सहायता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जारी राहत और बचाव कार्यों में मदद करेगी। वहीं गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की DNA प्रोफाइलिंग कराएगा। इसके लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान, राज्य फोरेंसिक और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: Important archaeological discoveries have come to light during restoration work at the historic Sri Saptakoteshwar temple in Dewar, Goa. The findings providing new insights into the site's ancient religious and architectural history. More from our correspondent.
3: Restoration work at the sacred Sri Saptakoteshwar temple in Dewar has led to significant archaeological discoveries. Relics and structural remains dating from the 14th to 16th centuries have been found along the old pathway between Koti Tirth and Madhwaji Tali. The discoveries indicate the presence of an ancient temple complex and a sacred corridor at the site. Among the important finds is a Kirtimukh motif traditionally carved above temple doorways, along with a carved capital of a temple pillar and portions of Devkoshtam used for placing adults. The variety of stone types and temple motifs suggests that the temple underwent successive reconstructions during the Vijayanagar period following the destruction of an earlier Kadamba era temple. These discoveries strengthen the historical chronology and sacred legacy of the ancient site by highlighting Goa's rich civilizational heritage. For Aaj Saveri, Mahesh Sopade, Panji.
0: भारत ने हांगकांग में चीन के खिलाफ कल महिला एशिया कप 2026 के सातवें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की। इसी के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। शीर्ष स्थान पर बने रहते हुए भारत 5 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप मैच खेलेगा। वहीं पाकिस्तान अपना पहला मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है।

0: तो श्रोतो आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद से जुड़ी खबरें। तो नीना, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
1: The enforcement directorate officials have been conducting searches in Chennai, Nagapattinam and Ramanathapuram at properties linked to three people accused in narcotics and drug smuggling cases investigated by the Narcotics Control Bureau as part of a wider operation across South India. At least 10 properties linked to Nizaruddin and Saeed, who were arrested by the NCB in connection with the drug smuggling cases, as well as properties belonging to their relatives. The second team conducted searches in 8 locations linked in Alex Mahalingam in Nagapattinam. Alex was arrested by the NCB in April last year after he was allegedly in possession of 1 kilogram of amphetamine. He has also multiple cases pending against him in Velankanni and Kelayur. And now what do we have from Delhi?
0: जी नीना, दिल्ली की बात हो और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर भी विशेष पूजा, भजन कीर्तन और दही हांडी के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस्कॉन द्वारका के भव्य समारोह से लेकर कनॉट प्लेस के पास स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में जन्माष्टमी में आरती और मध्य रात्रि जन्मोत्सव की तैयारियां भी की गई हैं। और इस वर्ष कुछ आयोजनों में पारंपरिक भक्ति के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने इस अवसर पर यातायात परामर्श जारी किया है और रात 1 बजे तक भारी यातायात और मार्ग परिवर्तन की उम्मीद है। पुलिस ने लोगों को मधुबन चौक से हेलीपोर्ट तक भगवान महावीर मार्ग और उससे जुड़े मार्गों से बचने के लिए कहा है। पुलिस ने KNK मार्ग, प्रहलादपुर रोड और कराला कंझावला रोड उपयोग करने की सलाह दी है। इसके अलावा लोगों को यात्रा की योजना पहले से बनाने के लिए कहा है। पुलिस ने लोगों से यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने का भी आग्रह किया है। वहीं दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शहर में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार इस दौरान दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर, स्वशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs के कार्यालय बंद रहेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन होगा 12 और 13 सितंबर को।
1: And for it, now we move on to Bengaluru. The 16th edition of Aero India will be held at Air Force Station Yelahanka, Bengaluru from February 8 to 12, 2027. Organized by the Department of Defense, Production, Ministry of Defense, and the 5-day event will bring together global aerospace and defense companies, policymakers, and industry stakeholders. The event will feature exhibitions, business engagements, technology demonstrations, and aerial displays by the Indian Air Force and international flying teams. Exhibitor registration and exhibition space booking will commence from September 3rd, 2026 through the official portal Aero India 2027.
0: और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम ने प्रतिष्ठित आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार 2025-26 के लिए चयनित 50 शिक्षकों के नामों की घोषणा की है। एक प्रेस संवाददाता में पुरस्कारों की घोषणा करते हुए मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजश्री शिरवाटकर ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। इन विजेताओं का चयन शहर भर के नगर निगम, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, विशेष विद्यालयों और निजी सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त संस्थानों के 121 साक्षात्कारित उम्मीदवारों में किया गया है।
1: न्यूज फ्रॉम हैदराबाद नाउ। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC Medical College and Super Speciality Hospital in Sanat Nagar, Hyderabad, welcomed a 15-member media delegation from Uttarakhand on Thursday to highlight its expanding medical education and advanced patient care infrastructure. Briefing the visitors, Dean Dr. S. Sitalakshmi outlined the institution's role within Telangana's broader ESIC network, which serves over 20.4 lakh insured persons and 74.3 lakh beneficiaries across 33 districts. The integrated 1,044-bed Sanat Nagar campus features an 800-bed main hospital alongside a 244-bed super speciality facility equipped with 159 ICU beds, 45 dialysis units and 15 operation theatres.
0: और अब नीना कोलकाता का रुख कर लेते हैं। कोलकाता और मायापुर स्थित इस्कॉन सहित सभी इस्कॉन केंद्रों में विशेष जन्माष्टमी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तरी कोलकाता की अगर बात की जाए तो बागजार गौड़िया मठ ने पिछले वर्षों की तरह ही इस बार भी पारंपरिक उत्सवों का आयोजन किया है, जबकि बेलूर मठ में धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। इस बीच हजारों तीर्थयात्री और श्रद्धालु भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और पास के वृंदावन में भी इस भव्य उत्सव में भाग लेने के लिए उमड़े हैं। प्रमुख मंदिरों के अलावा कई निजी घरों में भी ये त्यौहार श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज बादल छाए रहेंगे, दिन भर बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई में भी आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता की अगर बात की जाए तो कोलकाता में आज बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain and temperature will be 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will be 21 degrees Celsius to 29 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will be 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। तो सुनीना, सबसे पहले आपके पास क्या है इतिहास में?
1: यस फरत, इन 1882 इन इट्स फर्स्ट लार्ज स्केल टेस्ट थॉमस एडिसन्स लाइट बल्ब इज यूज्ड टू लाइट न्यूयॉर्क्स पर्ल स्ट्रीट स्टेशन।
0: और 1888 में आज ही के दिन गांधी जी ने इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा शुरू की थी।
1: In 1993, lawyers all over the country decided to abolish addresses like my lord, your lordship and replace them with sir, your honor.
0: और नीना 1944 की अगर बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने बेल्जियम के एंटवर्प शहर में प्रवेश किया था। वहीं 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 1967 में 6.5 तीव्रता वाले भूकंप की चपेट में महाराष्ट्र का कायोना बांध आया था, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।
1: In 2012, researchers at the University of Manchester demonstrated a magic carpet technology that uses an optical fiber network to detect and map walking patterns, helping to identify changes that could predict or prevent falls among the elderly. And in 1966, Mother Teresa was granted Indian citizenship, strengthening her connection with the country where she carried out much of her humanitarian work.
0: और अब आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, न्यायविद तथा लोक सेवक रहे बलदेव प्रसाद मिश्र का, जिन्होंने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा। वो भारत के एक ऐसे प्रथम शोधकर्ता थे जिन्होंने अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी के बदले हिंदी में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर डीलिट की उपाधि अर्जित की। बलदेव प्रसाद मिश्र ने तुलसी दर्शन पर विशेष कार्य किया। लगभग 85 प्रकाशित अथवा अप्रकाशित कृतियां उनकी साहित्य प्रतिभा की परिचायक रहीं। 1923 से 1940 तक बलदेव प्रसाद मिश्र ने रायगढ़ रियासत के न्यायाधीश, नायब दीवान और दीवान के पद पर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने लिखे द्वारा मुख्य रचनाओं में शामिल हैं श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, कौशल किशोर, जीवन संगीत, साकेत संत, मानस के चार प्रसंग।
1: Dear listeners, let's take a moment to remember a legend of Indian cinema, the unforgettable Mukri. Muhammad Umar Mukri began his journey in films alongside his school friend Dilip Kumar, debuting in Pratima back in 1945. What followed was a dazzling career spanning over 6 decades and more than 600 films. With his diminutive frame and impeccable comic timing, Mukri became a household name, bringing laughter and joy to millions. From classics like Mother India and Kohinoor to blockbusters like Amar Akbar, Anthony Lavaris and Bombay to Goa, Mukri's presence lit up the screen. He wasn't just a comedian, he was a storyteller who made audiences feel at home with his warmth and wit. Mukri's legacy reminds us that cinema is not all about heroes and heroines, but also about those who make us laugh, cry and reflect. His contribution to Indian film comedy remains timeless, and now, to honor his era and the spirit of his times, let's listen to a song that carries a message beyond generations, Mohammad Rafi's immortal anthem from Dhool Ka Phool. तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान का इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. अ सॉन्ग दैट रिमाइंड्स अस ऑफ यूनिटी ह्यूमैनिटी एंड द पावर ऑफ आर्ट टू ब्रिंग पीपल टुगेदर.

0: और श्रोताओं, अब हम जानकारी दे रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में। वे साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक रहे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता हिंदी साहित्य के इतिहास में सदाबहार माना जाता है। प्रेम, त्याग, सामाजिक मर्यादाओं और भावनात्मक द्वंद्व को केंद्र में रखकर लिखा गया ये उपन्यास हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में गिना जाता है। प्रयागराज की स्मृतियां भी उनके लेखन में दिखाई देती हैं। गुनाहों का देवता में प्रयाग के नगर देवता की कल्पना उनके शहर से गहरे लगाव को दर्शाती है। उनकी भाषा और कया शैली ने पाठकों के मन पर स्थायी प्रभाव भी छोड़ा है। इसके अलावा उनके कई उपन्यास काफी लोकप्रिय रहे, जिसमें सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग काफी लोकप्रिय रहे।
1: Born in London and raised in New York City, Ronson grew up surrounded by music. His early work with Lily Allen, Christina Aguilera and Amy Winehouse earned him acclaim, with Winehouse's Back to Black winning him the Grammy for Producer of the Year. It was in 2014 Uptown Funk featuring Bruno Mars that turned him into a global phenomenon. Mark Ronson isn't just a hit maker, he's a creative force using music to inspire and uplift. And now, let's turn up the energy with his record-breaking anthem, Uptown Funk.

0: और श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त के बारे में। इनकी रचनाओं में रुणा, सत्य, अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। हिंदी साहित्य में उन्हें एक कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई, लेकिन एक मूर्धन्य कथाकार के रूप में इन्होंने कथा साहित्य में अपना स्थान बनाया। इनके द्वारा लिखित मुख्य रचनाओं में शामिल है खंड काव्य अनाथ, आद्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, काव्य ग्रंथ, दैनिकी नकुल, जय हिंद, पाथे, मृणमयनी तथा आत्मसर और उपन्यास अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद भी इनके काफी लोकप्रिय रहे।
1: टुडे इज द बर्थडे ऑफ वन ऑफ

और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक ऋषि कपूर के बारे में। जी हाँ, आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। एक बाल कलाकार के रूप में काम कर उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। ऋषि कपूर को फिल्म बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके फिल्म अमर अकबर एंथनी, चांदनी, प्रेम, नसीब अपना अपना, खानदान, दीवाना काफी लोकप्रिय रही। इसके अलावा दामिनी में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की कुछ चुनिंदा फिल्मों से ये प्यारा सा गीत।

0: और श्रोताओ, इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज़ बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज़ इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSP F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है, और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update रहें, आगे रहें. X पर @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को follow करें.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F-404 इंजन HAL और जीई एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
5: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में

0: कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वहीं प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 ऑन बोर्ड GSLV-F17 रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends 2 more aircraft with relief materials to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. Festival of Janmashtami, which marks birth of Lord Krishna, being celebrated across the country today. And in women's cricket, India storm into semi-final of 2020 Asia Cup, beating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai.

0: திரைகானத்தில் தொடர்ந்து பாடல்கள் கேட்கும் முன்,
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இதுவரை அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் ஊரப்பாக்கம் எஸ் கார்த்திக் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டோம். கடம்பத்தூர் கே எம் சரவணன் அவர்கள் தவில்.
1: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
3: I am very happy to announce that GSLV.
4: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
3: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग
2: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्य संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
5: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य

0: न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV F-17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. ISRO Chairman V. Narayanan said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport.
2: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
1: Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. The Prime Minister said that the growing partnership between ISRO and Indian industry is adding new strength and scale to country's space program and expanding India's capabilities across the entire space ecosystem. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. Meanwhile, Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also lauded the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05. festival of Janmashtami, which marks the birth of Lord Krishna, is being celebrated across the country today.
3: Yashomati Maiya se bole
1: Nandlala, Radha kyu gori. Devotees thronged to the temples to offer prayers to Lord Krishna. Mathura and Vrindavan in Uttar Pradesh is fully geared to celebrate the birth of Lord Krishna. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of Janmashtami. 38 people were rescued after a ferry developed an engine problem in the Arabian Sea off Mumbai's Gateway of India last night. The ferry carrying 34 passengers and 4 crew members was returning from a sea excursion when it broke down around 8:30 p.m. about 1.5 nautical miles from the coast. After receiving information, police contacted boats operating in the area for assistance. In Nepal, the death toll from devastating flash floods has risen to 1,259, while more than 5,000 people remain missing more than a week after the disaster. According to Nepal police, Chitwan recorded the highest number of recovered bodies at 355, including unidentified human remains, followed by Nawalparasi East with 280 and Nawalparasi West with 212. Prime Minister Balendra Shah said the disasters linked to climate change must be strongly raised with the international community as a symbolic funeral were held by families of locals still missing. Italian Prime Minister Giorgia Meloni's government has become the longest running in Italy since the Second World War. It has broken record by lasting 1,413 days, surpassing the records set by the late Silvio Berlusconi between 2001 and 2005. Analysts say the record is likely to boost the Prime Minister's image as Italy, which has had almost 70 governments over the past 80 years, gears up for a national vote in 2027. In badminton, India's ace shuttler Kidambi Srikanth will take on Hong Kong's Li Chiu-Qi in men's single quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने EOS-05 वाले GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
4: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग important strategic data for our country.
0: सरकार ने विदेशी

0: अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
1: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ब्रिक्स देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय नेपाल में बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय के अनुसार रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है, जबकि आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी GE एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404 IN-20 इंजनों की नई खेप भेजी है।
3: GE एरोस्पेस द्वारा इंजनों की आपूर्ति से देश के स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन इंजनों की आपूर्ति HAL और GE एरोस्पेस के बीच वर्ष 2021 में हुए समझौते के तहत की जा रही है। इस समझौते में तेजस MK-1A के लिए 99 इंजनों की आपूर्ति शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के कारण इंजनों की आपूर्ति में लंबे समय से देरी हो रही थी। इसके चलते कई तैयार तेजस विमानों को इंजन मिलने का इंतजार करना पड़ रहा था। नई खेप मिलने से तेजस MK-1A विमानों के उत्पादन और उनकी आपूर्ति में तेजी आने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं अर्चना रंजन।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार का रिकॉर्ड बनाया है। एक रिपोर्ट।
4: जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने 1,413 दिन पूरे कर पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की सरकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इटली में पिछले 80 वर्षों में लगभग 70

0: सरकारें बन चुकी हैं और अगले वर्ष चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने अक्टूबर 2022 में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। उनकी पार्टी की नौ फासीवादी पृष्ठभूमि को लेकर उस समय यूरोपीय देशों और निवेश बाजारों में चिंता थी। हालांकि प्रधानमंत्री मेलोनी ने व्यवहारिक तरीके से सरकार चलाई। उन्होंने यूरोपीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया और वित्तीय अनुशासन पर बल दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: यमन में दक्षिण पश्चिमी ताइज प्रांत में सरकारी सुरक्षा बलों और हाउसी विद्रोहियों के बीच संघर्ष में लगभग 25 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मारे गए लोगों में 15 सरकारी सैनिक और 10 हाउसी सदस्य शामिल हैं। संघर्ष हाउसी लड़ाकों के सरकारी ठिकानों पर बड़े हमले के बाद शुरू हुआ। हाउसी लड़ाकों ने कुछ ठिकानों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सरकारी बलों ने जवाबी कार्रवाई कर उन्हें वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास पश्चिम अफ्रीकी प्रवासियों से भरी एक नाव हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी कई और लोग लापता हैं। स्पेन की समुद्री बचाव सेवा ने बताया कि नाव में सवार 44 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बताया जा रहा है कि नाव अगस्त की शुरुआत में गाम्बिया से 127 लोगों को लेकर रवाना हुई थी। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग
1: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
4: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी

5000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404 IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: மீண்டும் மெல்லிசை பாடல்களை நாளை மதியம் 12:40 கேட்கலாம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
4: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम।
1: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी।

दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करूबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक

0: बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: इस बीच भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां

0: उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
1: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ஆகாஷ்வாணி நேரம் 2:30.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता पर कहा कि ये राष्ट्र

0: के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग important strategic data.

0: घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों की मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
3: समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज कुछ जगहों पर तेज वर्षा हुई। वियतनाम में पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर भारत अपराजित रहा। लीग चरण में भारत ने एंटीगा और बरमूडा, इसराइल और चेक गणराज्य को हराया। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 37 पदक जीते हैं। इनमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम स्टुअर्ट और एंडर्स स्कारूप रमसेन से खेलेगी। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: www.nic.in. नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर आमंत्रित कर रहा है आवेदन इन पदों को भरने के लिए सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट एसोसिएट चाइल्ड हेल्थ और प्रोजेक्ट असिस्टेंट चाइल्ड हेल्थ तीनों पदों पर एक एक रिक्ति उपलब्ध है आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखने के लिए जा सकते हैं इस वेबसाइट पर www.nhsrcindia.org स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ में सहायक प्रोफेसर के 13 पदों की रिक्तियां उपलब्ध हैं भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ की वेबसाइट www.pgimer.edu.in राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास आमंत्रित कर रहा है वरिष्ठ उपाध्यक्ष AIF प्रकोष्ठ के 2 पदों को भरने के लिए आवेदन पात्रता मानदंड चयन की प्रक्रिया आवेदन प्रस्तुत करने तथा नियम और शर्तों सहित अन्य निर्देशों के लिए देखिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की वेबसाइट www.npstrust.org.in केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में इन पदों को भरा जाना है उपनिदेशक प्रशासन सहायक निदेशक प्रशासन कंटेंट प्रबंधक तथा निजी सचिव विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cara.wcd.gov.in केंद्रीय सतर्कता आयोग आमंत्रित कर रहा है निजी सचिव के एक पद के लिए आवेदन 3 रिक्तियां उपलब्ध हैं पात्रता शैक्षणिक योग्यता अनुभव आयु आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.cvc.gov.in दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत श्री गुरु गोविंद सिंह वाणिज्य महाविद्यालय आमंत्रित कर रहा है प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य के तौर पर अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी करना होगा इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का वेब लिंक है rec.uod.ac.in विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.sggscc.ac.in पशुपालन और डेयरी विभाग पशु पोषण विशेषज्ञ के एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है विस्तृत जानकारी के लिए देखिए पशुपालन और डेयरी विभाग की वेबसाइट dahd.nic.in आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी

0: जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गीत सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारा ये पूरा कार्यक्रम रंगारंग रहेगा इसी एक भावना के साथ। शाम के 4:30 हुए हैं, वक्त है न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, जिसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे उनके क्षेत्र के खास समाचार। खेल गतिविधियां भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी और उन खास हस्तियों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। परिक्रमा के आज के अंक में मैं हूं नईम अख्तर और मेरे साथ हैं सायरा मुज्तबा। सायरा कैसी हैं आप? मुझे लग रहा है कि आप तो बहुत गीत में खो गई हैं और जन्माष्टमी का आपके ऊपर भी असर दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल आदाब नईम, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स, और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। नईम, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, जब इतना अपबीट गाना बज रहा हो और वो भी जन्माष्टमी का मौका हो, तो जब हसरत मोहानी अपने आप को नहीं रोक पाते थे।
0: सही बात है, हमारा क्या चीज है। सही बात है,
1: दैट्स राइट। एंड हियर इज विशिंग एवरी one a very very happy Janmashtami today, and of course everybody's phones are flooded with wishes of Janmashtami, but one message that really stuck with me was somebody sent a beautiful message ke ye janm ka samay nahi tha, ye samay ka janm tha.
0: Kya baat hai, kya baat hai, jeet liya dil.
1: So that really I thought I would share with our listeners today, and has with us to hum hazir hai taza tareen khabron ke sath, and of course since today the entire country is probably imbued in the colors of Janmashtami, so we'll cover that in detail in our Dateline India as well. But first, let's start with the headlines.
0: Ji, bilkul.
1: Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector.
0: न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू.
1: Center to make available DNA profiling services for first degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1282.
0: Shri Krishna Janmashtami aaj desh bhar mein shraddha aur ullas ke sath manayi ja rahi hai.
1: IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow.
0: Aur China Open badminton mein bharatiya jodi Satvik Sairaj Ranki Reddy aur Chirag Shetty ka muqabla aaj sham quarter final mein Denmark ki jodi se hoga.
1: And yes, as I had mentioned that we are going to cover Janmashtami in detail in Dateline India. Well, Naeem, there are moments in history that are remembered not just as events but as divine messages, moments that continue to inspire generations with faith, hope and love.
0: Ji, aur aisa hi ek pavitr pal hai Bhagwan Krishna ka janm. Pyare Kanha, नटखट माखन चोर, मनमोहक मुरलीधर और वो दिव्य मार्गदर्शक जिन्होंने दुनिया को धर्म का रास्ता दिखाया।
2: बन

0: एंड वेल नहीं, ऑफ कोर्स जो भगवान होते हैं वो तो भगवान होते हैं, बट बिकॉज ऑब्वियसली कभी वो इंसानों के रूप में आते हैं तो दे हैव टू गो थ्रू जन्म एंड मृत्यु, वरना भगवान तो जन्म मृत्यु से परे हैं, बट नन द लेस ऑफ कोर्स व्हाट मेक्स जन्माष्टमी सो स्पेशल इज दैट मच मोर देन अ फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इट रिमाइंड्स अस दैट इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप, दैट ट्रूथ मे बी टेस्टेड बट इट कैन नेवर बी डिफीटेड एंड दैट राइटियसनेस will ultimately prevail.
1: ये कहानी हमें मथुरा ले जाती है जहाँ अत्याचारी राजा कंस की जेल में देवकी और वासुदेव के घर कृष्ण का जन्म हुआ था। आधी रात का समय था, दुनिया सो रही थी, लेकिन कुछ असाधारण होने वाला था। जेल के अंधेरे में भगवान कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और अपने साथ उम्मीद का संदेश तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का वादा लेकर आए।

कहा जाता है कि यमुना नदी ने खुद ही नन्हे कृष्ण के लिए रास्ता बना दिया था। दैवीय कृपा से सुरक्षित वासुदेव नदी पार करके गोकुल पहुंचे और वहां किस्मत कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा मैया के प्यार भरे घर ले आई।

और इसके बाद जो हुआ वो शायद भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के सबसे खूबसूरत अध्यायों में से एक था, कृष्ण का बचपन। गोकुल और वृंदावन उनकी हंसी, उनकी शरारतों और उनकी मनमोहक बांसुरी की धुन से जीवंत हो उठा।

0: Yes, of course, from being the Makhan chore who stole butter to playing with the gopis, every little leela of Kanha became a story of divine love. No wonder then that Janmashtami is celebrated with such immense devotion and enthusiasm across the country. From grand temples to beautifully decorated homes, the festive spirit can be felt everywhere. And nahin, especially aadhi raat ka sabko intezaar hota hai, especially aap jaiye mandiron mein, to jab wo janm ka waqt kehte hai na, to it's quite a spectacle to watch, isn't it?
1: और वो जो मंदिरों के घंटे होते हैं उस टाइम दूर दूर तक सुनाई देते हैं.
0: That's right.
1: और इस मौके पर भक्त व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और विशेष अनुष्ठान करते हैं. मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है और सुंदर झांकियों के जरिए कृष्ण के जीवन की विभिन्न घटनाओं को जीवंत किया जाता है. जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, भक्ति गीत और मंत्रों का गूंजना माहौल को दिव्य उत्सव के एहसास से भर देता है.
0: There's also a special culinary connection with Krishna. Well, after all, how can we celebrate this festival without remembering the love for makhan and mishri? Well, sweets and traditional delicacies are lovingly prepared and offered to Lord Krishna as bhog.
1: Aur kai gharon mein in cheezon ko taiyar karna parivar ki ek sundar parampara ban jati hai jo bhakti aur utsav ki bhavna ke sath sabhi ko ek sath lati hai.

0: temple in Dwarka. Devotional songs and chanting will be performed throughout the day and late into the night. In regard with Janmashtami, celebrations at the ISKCON Temple, Ramlila Ground and Japanese Park in Rohini, the Delhi Traffic Police has advised people to avoid Bhagwan Mahavir Marg and connecting routes between Madhuban Chowk and the heliport. The Traffic Police also informed that heavy pedestrian movement is expected at Khadusham Dham Temple in Narela, GT Karnal Road and Ghantaghar Chowk may also be avoided as processions will be taken out. For Parikrama, Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: And yes, Naeem, we mentioned Hasrat Mohani's devotion to Shri Krishna in the beginning of the show. And Mathura, wo harmesha unhone koi Janmashtami miss nahi ki. Every year he used to visit Vrindavan. And unhone bahut kuch likha bhi hai Hasrat Mohani ne. Aur kehne ko wo Maulana the. Maulana Hasrat Mohani, can you imagine? So this shows the liberal spirit that, you know, that people who are actually enlightened, they see the unity in everything, isn't it? To unhone likha hai bade khubsurti se ke, मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू इसी का, हर जर्राए सरजमीन ए गोकुल, दाराए जमाल ए दिलबरी का, बरसाना ओ नंद गांव में भी, देखाए हैं जलवा हम किसी का, पैगाम हयात ए जाविदा था, हर नगमा है कृष्ण बांसुरी का, वो नूर ए स्याह या की हसरत, सर चश्मा फरोग आगाही का।
1: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और वैसे तो उर्दू पोइट्री में बहुत कुछ श्री कृष्ण के बारे में है, लेकिन वक्त इतना नहीं है, नहीं तो पूरा परिक्रमा ही इसी में निकल जाएगा।
3: वेरी ट्रू। एंड वेल, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन मथुरा, बट अगर दूसरी तरफ हम लोग चले द्वारकाधीश, तो देखते हैं गुजरात में क्या चल रहा है।
1: जी,
3: ग्रैंड सेलिब्रेशंस एंड स्पेशल रिलीजियस रिचुअल्स आर अंडरवे एट मेजर श्राइन्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड फेमस द्वारकाधीश, डाकोर एंड श्यामलाजी टेम्पल्स. Let's hear more from our correspondent.

0: His life teaches us the importance of standing up for what is right, showing compassion, remaining courageous in difficult times, and also performing our duties with sincerity. His message continues to remind us that we must not lose faith when life becomes challenging.
1: और शायद इसीलिए सायरा कृष्ण की कहानी हर पीढ़ी के लोगों से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है. एक बच्चे के लिए वो नटखट कान्हा है, एक भक्त के लिए वो प्यारे प्रभु हैं, बहुत से लोगों के लिए वो ऐसे शाश्वत मार्गदर्शक हैं जो ज्ञान और साहस देते हैं.

0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है।
1: That's right. So now the time has come to do parikrama of the country. और हम लोगों ने एक तरह से परिक्रमा शुरुआत से ही करना शुरू कर दी, बिकॉज हम लोगों ने जन्माष्टमी भी देखी कहाँ कहाँ कैसे मनाई जा रही है। But now we are heading towards Ladakh. Well, in Ladakh, the 3-day national seminar on Buddhist mind training and artificial intelligence is being held at the Central Institute of Buddhist Studies. And let's hear more from our correspondent.
2: The 3-day national seminar on Buddhist mind training and artificial intelligence is being held at the Central Institute of Buddhist Studies, Choklamsar, from 2nd of September. The seminar is focusing on key themes including the intersection of mind training and AI, examining ethical frameworks within Buddhist philosophy to address the societal and ethical implications of advancing AI, mindfulness and cognitive science by comparing traditional meditative practices with computational cognitive models and discussing the role of modern technologies in preserving and disseminating traditional Buddhist philosophy and Himalayan cultural heritage. The co-chairman of the organizing committee, Dr. Lobsang Tsultim, highlights the aims and importance of this seminar.
3: ये सेमिनार का मेन मकसद ये है कि माइंड और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों में बहुत संदेह है, उस संदेह को दूर करने के लिए और ये बुद्धिस्ट माइंड ट्रेनिंग से क्या हो सकता है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारे सभी स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से है, तो उसको किस तरह से सही ढंग से यूज करना है। यूज करने के लिए सबसे पहले मानव का चित्त का संयम रखना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए बौद्ध धर्म के जो चित्त शोधन जो माइंड ट्रेनिंग का जो प्रैक्टिस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सही ढंग से अगर हो पाने का एक प्रयास है।
2: Scholars and researchers from across the country are participating in the deliberations. For Parikrama, this is Sethan Rashi from Leh Ladakh.
0: और लद्दाख से सायरा आप चलते हैं हम कुर्सियोंग की तरफ, जहां देश की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने बागडोगरा, नक्सलबाड़ी, पानी टंकी, खोली बाड़ी, गल गलिया को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग 327 के 31.02 किलोमीटर सड़क खंड को 4 लेन का बनाने का निर्णय लिया है।
4: केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत गुरुवार को संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संपर्क संजाल को और अधिक मजबूत करने की घोषणा करते हुए 2077 करोड़ 18 लाख की सड़क विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना के तहत बागडोगरा, नक्सलबाड़ी, पानी टंकी, खोड़ीबाड़ी, गलगलिया को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 के 31.02 किलोमीटर के खंड को 4 लेन बनाया जाएगा। इससे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तथा बिहार के गलगलिया तक वैकल्पिक सड़क संपर्क और अधिक मजबूत होगा तथा नेपाल की सीमा को जोड़ने वाला पानी टंकी तक के आवागमन को सुगम बनाएगा। स्थानीय किसानों, चाय व बागवानी उद्योगों को अपने उत्पादों को बाजार तक समय में पहुँचाने में मदद मिलेगी। कृषि, बागवानी तथा उद्योग व स्थानीय रोजगार को बल मिलेगा। इससे पूर्वोत्तर भारत के संपर्क संजाल और सुदृढ़ होंगे तथा पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के बीच संपर्क बेहतर होंगे। यह परियोजना अति संवेदनशील तथा देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण चिकन नेक के संपर्क संजाल, सैन्य व रक्षा संचालन, सुरक्षा निगरानी, व्यापार को बेहतर बनाएगा। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम

0: बंगाल के सिलीगुड़ी तथा बिहार के किशनगंज को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के विकल्प के रूप में इस परियोजना को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्मरण रहे दो सप्ताह पहले 20, 21 व 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर का 3 दिवसीय दौरा किया था। महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा सुरक्षा बैठकें की थी। सीमा सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस कई पूर्वाधार व निगरानी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में पूर्वाधार सड़क व सुरक्षा संजाल विकास केंद्र सरकार के लिए कितना अहम व महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शियांग।
1: और खेल के मैदान पर अगर नजर डालें तो वियतनाम में जारी पिकबॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा।
2: And if you talk about some business news, well, benchmark domestic equity indices rebounded today, snapping a 4-session losing streak. Sensex climbed 363 points to close at 76,515, while Nifty added 24 points to settle at 23,898. And for more market updates, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और अब बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: आज हम बात करेंगे जाने माने राष्ट्रवादी और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक दादा भाई नौरोजी की। भारतीय राजनीति के इस पुरोधा को प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को तत्कालीन बंबई में हुआ था। उनकी लोकप्रियता ही थी कि वे 2 बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। दादा भाई ब्रिटिश संसद के पहले एशियाई सदस्य चुने गए थे। उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्परिणामों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाना जाता है।
4: अपने कार्यकाल के दौरान दादा भाई ने भारत की हालत सुधारने को लेकर जबरदस्त प्रयास किए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के चलते भारत को हो रहे नुकसान पर उन्होंने गंभीर शोध किया था। इसके बाद वे ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक हो गए।
5: दादा भाई नौरोजी ने 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया था।
4: दादा भाई नौरोजी की हस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 1895 में भारतीय व्यय के लिए गठित शाही आयोग का सदस्य बनाया गया था। उन्होंने 1886, 1893 और 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी।
1: आज पुण्यतिथि है डॉक्टर धर्मवीर भारती की, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी वो रहे। उन्हें 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके उपन्यास गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास में सदाबहार माना जाता है।
2: Today is also the birth anniversary of music composer and playback singer Adi Srivastava, and he gave some very memorable compositions to Indian cinema, predominantly Hindi films. In fact, he composed music for over 100 films. And however, just a day after his birthday, when he was turning 51, he died of cancer in Kokilaben Hospital. लेकिन अगर वही कहते हैं ना, नईम के एक आर्टिस्ट तो कभी नहीं मरता,
1: कभी नहीं मरता, और उनके गीत आज भी हमारे दिलों के करीब हैं।
2: That's right. And well, among the singers who sang for him was of course Lata Mangeshkar also, who sang his first song O Sajna Dilbar. That was a duet with Uth Narayan, which became popular on radio as well. But today we are here with a very nice song from the film Chalte Chalte. Let's listen to it.

0: जी हाँ, आकाशवाणी सुनने का ही माध्यम है तो आपको सुना ही देते हैं एक और हस्ती का नाम। वो थे ऋषि कपूर, जिनकी आज जयंती है। 4 सितंबर 1952 को चेंबूर मुंबई में उनका जन्म हुआ था। हिंदी फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ वो निर्माता और निर्देशक भी थे। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने काम करके अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ ही 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। और फिल्म मेरा नाम जोकर, जो इनकी पहली फिल्म थी, उसमें उनकी शानदार भूमिका के लिए 1971 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। रूसी सरकार ने भी उन्हें 2009 में सिनेमा में योगदान के लिए सम्मानित किया था। तो
1: दैट्स राइट। एंड इनफैक्ट आपने कहा ना कि उनकी जो पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने वो स्कूल बॉय जो बने हैं, राज कपूर का बचपन का उन्होंने किरदार निभाया है, फॉर विच ही गॉट द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। एंड एज एन अडल्ट हिज फर्स्ट लीड वॉज ऑपोजिट डिंपल कपाड़िया इन द teen romance film Bobby, as you mentioned, which again won him the Filmfare Award for Best Actor. And well, in the years to come, he appeared in many successful films like Kabhi Kabhi, Laila Majnu, Amar Akbar Anthony, Hum Kisi Se Kam Nahi, Sargam Naseeb, Qatilon Ke Qatil, Prem Rog Quli, चांदनी ऑफ कोर्स। एंड हर कोई हम लोग उनको जो है उनकी जो पेपी एक पर्सोना था उससे भी जानते हैं और उनके स्वेटर्स से सब जानते हैं।
0: और जबकि उसकी खास बात ये थी कि वो जहाँ भी जिस भी शहर में जाते थे अपनी जो जर्सीज लेकर आते थे वही वो उन्होंने फिल्मों में यूज की हैं। खैर, यहाँ एक और चीज मैं थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगी कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा बड़े रोमांटिक हीरो के रूप में अगर शाहरुख खान को जाना जाता है तो ये वो दौर था ऋषि कपूर का जब ऋषि कपूर से बड़ा रोमांटिक हीरो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं था।
1: That's right. So we have prepared a medley of his songs. Let's listen to it.
0: जी।

0: और मेडली के पहले दो गीत सुनकर के मुझे एक चीज और याद आई कि अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ उन्होंने कुल 12 फिल्मों में काम किया है.
1: That's right, a very hit on screen and off screen जोड़ी. And इतने अच्छे गाने हम लोग ने सुने और सुनाए अपने लिसनर्स को, तो आई एम श्योर एवरीबॉडी इज हमिंग जैसे हम और आप भी गुनगुना रहे हैं. बिल्कुल. बट नाउ इट्स टाइम टू कॉल अ रैप.
0: जी, आज का परिक्रमा कार्यक्रम यही समाप्त करने की अनुमति दीजिए नईम अख्तर और सायरा मुज्तबा को. नमस्कार.
2: நேரம் 5 மணி. ஆகாஷ்வாணி. நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
3: எஃப்எம் கோல்டின் அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் ராதா பார்த்தசாரதி அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். எம் விஜய் அவர்கள் வயலின், திருச்சி ஜி அரவிந்த் அவர்கள் மிருதங்கம். முதலில் கருணை செய்வா என்று தொடங்கும் பாபநாசம் சிவன் பாடல், ஹம்சத்வனி ராகம், ஆதிதாளம்.

0: இதுவரை அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் ராதா பார்த்தசாரதி அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். எம் விஜய் அவர்கள் வயலின், திருச்சி ஜி அரவிந்த் அவர்கள் மிருதங்கம். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை ஆகாஷ்வாணி எஃப்எம் கோல்டு 100.1. 6:10 உள்ளன. தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்திகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को

बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की।

0: बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने 1-1 गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் 6:05. ஆகாஷ்வாணி
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: இன்றும் நாளையும் ஒலிபரப்பாக உள்ள நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பு: 6:30 மார்க்கெட் மந்திரா, 7:10 இளைய பாரதம், கீதாமிரதம் ஸ்லோகங்கள் முதல் பகுதி, சொல்பவர் கே பார்கவராம், விளக்கம் அளிப்பவர் வி சாய் ஸ்வரூப், 7:50 செய்தி கதமம், 8:10 திரைகாணம், 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 கரண்ட் அஃபேர்ஸ், 10:10 விஸ்வ தர்ப்பன், 10:20 வேர்ல்டு நியூஸ், 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், 11:10 ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி மகோத்சவம், ஸ்ரீ துவாரகாதீஷ் மந்திர் மற்றும் மதுராவில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவதரித்த தலம் ஆகிய இடங்களிலிருந்து நேரடியாக ஒலிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சியை அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability With a people-centric

0: approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: இன்று நள்ளிரவு 12:10 இரவின் மடியில் 1:10 நினைவில் நின்றவை, 2:10 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, 3:10 இனியராக மிலின் சிட்டல் அவர்களின் பாட்டு, தொடர்ந்து உஸ்தாத் ஆசாத் அலிகான் அவர்களின் ருத்ரவீணேசி கேட்கலாம். அதிகாலை 4:10 பொங்கும் மங்கலம். கலசப்பாக்கம் கே என் அமரேசன் அவர்களின் நாகஸ்வரேசை, தேசு டி முருகதாஸ் அவர்கள் தவல். 5:10 புலரும் பொழுது, 6:10 தேனீசை, 7:30 ஆச்சவரே செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல், 8:30 திரைகானம், 9:00 அரங்கிசை. கே பாஸ்கரன் அவர்களின் புல்லாங்குழல் இசை கேட்கலாம். எஸ் சுபஸ்ரீ அவர்கள் வயலின், பூங்குளம் எஸ் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மிருதங்கம், ஆர் சாய் பரத் அவர்கள் கஞ்சீரா. 11:30 மலைப்பூதண்டா தெலுங்கு நிகழ்ச்சி. ஆசிரியர் தினம் சிறப்பு நிகழ்ச்சி, தொடர்ந்து ரசகுலிகளு. பகல் 12:00 துறைகானம், 12:40 மெல்லிசை, 1:10 ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜனனம் இசைப்பேருரை நிகழ்த்தியவர் கிரிஜா ராமசாமி அவர்கள். ஆர் சுவாதிஸ்ரீ அவர்கள் வயலின், தஞ்சாவூர் எஸ் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிருதங்கம். 3:00 மலையாள நிகழ்ச்சி, முன்னதாக 2:30 திரைகானம், 4:10 தேநீர் நேரம், 4:20 எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ், 4:25 ரோஸ்கார் சமாச்சார், 4:30 பரிக்கிரமா செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல், 5:00 அரங்கிசை. ஏ கே மகேஷ் அவர்கள் பாடியுள்ள பக்தி பாடல்கள் கேட்கலாம்.
0: எவ்ரி கிரேட் ஜேர்னி பிகின்ஸ் வித் பீப்பிள் கமிங் டுகெதர் To listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: இனி டெல்லி அஞ்சல் தொடரும்.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है. मैं हूं नईम अख्तर. श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 2 से 4 सितंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं. फरवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की ये पहली भारत यात्रा है. उनके साथ बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रेंकेन के अलावा अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के बीच हुई बातचीत के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है. दोनों देशों ने अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि भारत और बेल्जियम के आर्थिक रिश्ते किस नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भारत बेल्जियम संबंधों में यूरोपीय संघ की भूमिका कितनी अहम है और बीते करीब 8 दशक में दोनों देशों की साझेदारी किस तरह विस्तार पाती गई है. श्रोताओं, भारत और बेल्जियम के बीच आर्थिक संबंधों को समझने के लिए यूरोपीय संघ के साथ भारत की व्यापक साझेदारी को समझना भी जरूरी है. बेल्जियम यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और इसी वजह से भारत बेल्जियम संबंधों का प्रभाव दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों से आगे यूरोप के साथ भारत के व्यापक आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव तक जाता है. भारत बेल्जियम व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, आइए विस्तार से समझते हैं.
4: भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार की पारंपरिक पहचान हीरा कारोबार से जुड़ी रही है. बेल्जियम का एंटवर्प शहर दुनिया के प्रमुख हीरा व्यापार केंद्रों में शामिल है और एंटवर्प का मुंबई तथा सूरत से लंबे समय से व्यापारिक जुड़ाव रहा है, लेकिन अब दोनों देश इस पारंपरिक व्यापारिक संबंध को नए क्षेत्रों तक ले जाने पर जोर दे रहे हैं. दोनों देशों ने जीवन विज्ञान, दवा और स्वास्थ्य सेवा, रसायन, उन्नत सामग्री और विनिर्माण, डिजिटल तकनीक, रक्षा, विमानन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग

0: बढ़ाने पर संभावनाएं पहचानी हैं। जीवन विज्ञान के क्षेत्र में दवा, जैव प्रौद्योगिकी, क्लिनिकल रिसर्च, नवाचार और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं में दोनों देशों की क्षमताओं को जोड़ने पर जोर दिया गया है। निवेश के क्षेत्र में भारत बेल्जियम निवेश त्वरित समाधान तंत्र की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के निवेशकों के लिए निवेश को आसान बनाना, कारोबारी बाधाओं को दूर करना और भारत तथा बेल्जियम के बीच लंबे समय के निवेश सहयोग के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। दोनों देशों ने बेल्जियम के फेडरल होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी और भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF के बीच जारी सहयोग का भी स्वागत किया। दोनों पक्ष भारत बेल्जियम आर्थिक और निवेश गलियारे की स्थापना की दिशा में सहयोग को औपचारिक रूप देने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। आर्थिक सहयोग का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स है। दोनों देशों ने बंदरगाह विकास, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और ड्रेजिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत के बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास में बेल्जियम की विशेषज्ञता उपयोगी हो सकती है। भारत बेल्जियम आर्थिक संबंधों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा औद्योगिक सहयोग, टिकाऊ उद्योग और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के शोधन और पुनर्चक्रण पर सहयोग का विशेष महत्व है। वहीं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स परितंत्र और बेल्जियम की IMEC जैसी उन्नत शोध संस्था के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। हरित अर्थव्यवस्था भी साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर एक नए समझौता ज्ञापन का स्वागत किया। इसके अंतर्गत हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, अपतटीय पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में दोनों देश उत्पादन से लेकर परिवहन, भंडारण और अंतिम उपयोग तक पूरी मूल श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: श्रोताओ, भारत बेल्जियम संबंधों और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के महत्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने विचार साझा किए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच ये अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। आज हमने इन संभावनाओं को ठोस परिणामों में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है। हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है। हम दोनों देशों की फाइनेंशियल, फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे।
1: श्रोताओं, भारत और बेल्जियम के आर्थिक संबंधों में आज भले ही नए क्षेत्र जुड़ रहे हों, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों की नींव काफी पुरानी है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। ब्रुसेल्स में भारत का दूतावास 1948 में खुला, जबकि नई दिल्ली में बेल्जियम का दूतावास 1947 में ही स्थापित हो चुका था। भारत और बेल्जियम के बीच संबंधों की ये यात्रा करीब 8 दशक में कई चरणों से होकर गुजरी है। पारंपरिक व्यापारिक संबंधों से आगे बढ़ते हुए दोनों देश अब तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और निवेश जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग कर रहे हैं। इस बदलाव को किस तरह देखा जाना चाहिए, आइए सुनते हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल से।
3: अभी तक जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत हद तक डायमंड ट्रेड पे बेस्ड रहे हैं, लेकिन अब जो है हम कोशिशें कर रहे हैं कि ये कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स तक फैल जाएं, और जो हमने स्पेसिफिकली टारगेट किए हैं सेक्टर्स वो हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स का क्षेत्र है, इसमें बेल्जियम का जो एक IMEC इंस्टीट्यूट है वो भारत के इकोसिस्टम में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो रहा है। तो इसके अलावा दोनों कंट्रीज हैं वो फोकस कर रही हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे, फार्मास्यूटिकल्स, लाइफ साइंसेस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मैरिटाइम, इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम्स पे भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट है, ये भारत और EU का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उससे उसको बहुत बढ़ावा मिला है और साथ ही साथ हमारे जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बनाए गए उनसे कोशिश है कि क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट तेजी से हो सके।

0: श्रोताओं, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते का भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और निवेश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए सुनते हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल से।
1: ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इससे ट्रेड बैरियर्स हटते हैं और ग्रोथ की नई दिशाएं खुलती हैं, नए रास्ते खुलते हैं। अब जो भारत का ईयू के साथ ट्रेड बढ़ रहा है, उसमें बेल्जियम जो है वो दूसरे स्थान पर है। जो हमारे ईयू कंट्रीज के साथ ट्रेड है उसमें बेल्जियम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, नंबर दो पे आ रहा है। और इसकी वजह से बेल्जियम को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर टैरिफ कम होते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी पे, केमिकल्स और मशीनरी पे, इन सब से जो ये बायलैटरल ट्रेड बहुत बढ़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो ये ईयू और इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इससे जो कस्टम्स ड्यूटीज कम हुई हैं दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी और ईयू की तरफ से, और जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस थे वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इसकी वजह से जो ट्रेडिंग प्रोसीजर्स है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, वो बहुत बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा देखिए, जो ओवरऑल पार्टनरशिप जैसे तंदुरुस्त होती है, तो जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं जैसे डायमंड ट्रेड, इनको ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ावा मिलता है और इनकरेज मिलता है।
0: श्रोताओं, आर्थिक सहयोग के अलावा भारत और बेल्जियम के संबंधों में सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकियों पर भी विशेष जोर दिया गया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए भी सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने भारत बेल्जियम रणनीतिक वार्ता की शुरुआत का स्वागत किया है। वहीं बेल्जियम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग मोहित सिंह।

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी का स्वागत है कार्यक्रम में. और इससे पहले कि हम आगे और बात करें, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज रिबाउंड, सेंसेक्स एड्स ओवर 350 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट नियरली 23,900. India's foreign exchange reserves surged to a record high of over $740 billion last week and global crude oil prices declined.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स में 350 से अधिक अंकों का उछाल और निफ्टी 23,900 के आसपास बंद हुआ. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह 740 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट.

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक में आज तेजी लौटी और लगातार चार दिनों की गिरावट का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 363 अंक यानी आधा प्रतिशत की तेजी के साथ 76,515 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24 अंक यानी 0.1% ऊपर आकर 23,898 पर बंद हुआ। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिडकैप सूचकांक

0: 0.2% नीचे आ गया, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% का उछाल देखा गया। इससे पहले वैश्विक बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच बाजार में गैप अप से शुरुआत हुई। दोनों मुख्य सूचकांक पूरे सत्र के दौरान बढ़त के साथ और एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद इंडेक्स की बढ़त में कुछ कमी भी देखी गई।
1: The benchmark domestic equity indices rebounded today, snapping a four-session losing streak. The Sensex climbed 363 points or 0.5% to close at 76,515, while the Nifty added 24 points or 0.1% to settle at 23,898. However, in the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.2%, while the Nifty small-cap 100 index gained 0.2%. Earlier, the markets opened with a gap up amid positive global cues. Both the benchmark indices remained in the green throughout the session, trading within a narrow range. However, following the closing auction session, the indices paired some of the gains.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बढ़त वाली कंपनियों में टाटा स्टील 2.9%, रिलायंस 1.6% और बजाज फाइनेंस 1.5% ऊपर चढ़े। इसके उलट भारतीय एयरटेल, HCL टेक में 1.2% और एटर्नल में 1.1%, वहीं एशियन पेंट्स में 0.5% की गिरावट आई।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 16 out of 28 sectors edged upwards. Among the top performers, housing finance, metal, telecommunications and insurance rose 1.4%, commodities and financial services gained 0.6%, and private banks index added 0.5%. In contrast, realty and capital goods declined 0.7%, healthcare fell 0.5%, and hospitals lost 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,388 companies advanced, 1,991 declined, and 239 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में बिना किसी बदलाव के 94.49 रुपए पर बंद हुआ। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
0: सुषमा जी, आज घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक तेजी दिखाते हुए बंद हुए, चार दिनों की गिरावट का सिलसिला टूटा और ठीक ठाक हमें बढ़त इसमें आज मार्केट में देखने को मिली है और गैप अप के साथ में मार्केट आज खुला था और पूरे सत्र के दौरान एक अच्छा कारोबार देखने को मिला है। तो ये जो अंतिम दिन था आज कारोबार का, इसे सकारात्मक रूप से ये कह सकते हैं कि थोड़े से लाभ के साथ बंद हुआ या फिर जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं उन्हें समेटने का ये प्रयास है?
2: हाँ, ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी तरह इसको सारा डिस्क्राइब कर दिया है, जो सिनेरियो है स्टॉक मार्केट्स में। हालांकि ये मेरे ख्याल स्टॉक मार्केट्स का एक जो पॉजिटिव इंडिकेटर जो फीलिंग है कि भाई यूएस का जो फेड, यूएस फेड का जो रेट कट है, रेट हाइक अभी नहीं होने जा रहा है, और क्योंकि इन्फ्लेशन के जो इंडिकेटर्स हैं वो दिखाई दे रहे कि अगस्त में इंडिकेटर्स कम हो रहे हैं, तो एक ये थोड़ा सा पॉजिटिव हिंट आ रहा है अमेरिका से। और बाकी जो ग्लोबल क्यूज हैं उसकी ये हैं कि भाई बाकी स्टॉक मार्केट्स भी ज़रा अच्छे से इक्विलिब्रियम में चल रही हैं और हमारा डोमेस्टिक डेटा जो है, डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे आए हैं। हमारा जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट है, हालाँकि इतने जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इतनी सप्लाई साइड इश्यूज हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।
1: सुषमा जी, यू टॉक्ड अबाउट द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स एंड ऑफ कोर्स यू नो द फेड काइंड ऑफ एट द मोमेंट काइंड ऑफ यू नो बेटिंग द रेट हाइक, बट लेट अस कम बैक टू द अदर साइड। Today we saw the both the indices rather gaining almost 0.5%. Now, can we say that this is just flash in the spanner, or is it? Why I'm asking this because FIIs and FPIs are mostly they're inward flowing after a long, long time.
2: Yes, and yet,
1: you know, over the past, if we look at the past maybe 8 to 10 sessions, the indices have not been doing that great.
2: Yes.
1: Of course, barring today.
2: Yes.
1: So how do you see that?
2: Well, I think you won't call it a flash in the pan, but at the same time, I don't think we can expect a great deal of upside in the coming days because, first of all, because the geopolitical tensions, which we thought were going to calm down, I mean, for the last 2 months we've been hearing from the US and from Iran that this whole conflict is going to die down. And

0: की बात करें, जैसे कि हालात चल रहे हैं वैश्विक स्तर पर, हमारी अर्थव्यवस्था इन आंकड़ों के साथ मजबूती के साथ खड़ी नजर आती है?
1: बिल्कुल खड़ी नजर आती है। ये अभी के अभी मैंने FCNRB की बात की तो 136 बिलियन डॉलर आ गए हैं। तो ये जो रिज़र्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, इसका हमारा बहुत बढ़ गया है इसके आने से। और खैर, सोने का जो रिज़र्व है, मेरे ख्याल उसकी वैल्यूएशन से ही, क्योंकि सोने का जो दाम है वो बढ़ गया है। तो ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है ये हमारे रिज़र्व्स। एक ज़माने में इंडिया का ये होता था कि कितने महीने का इम्पोर्ट हमारे पास रिज़र्व्स हैं, और अब हमें कोई चिंता ही नहीं है। तो ये और एक और चीज़, खैर हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारे डायस्पोरा से आते हैं, वो बहुत बड़े हैं। इसके बारे में शायद थोड़ी सी हमें चिंता होगी, क्योंकि और सरकार को चिंता होगी क्योंकि वेस्ट एशिया से हमारे बहुत सारे ये रेमिटेंसेस जो आ रहे हैं इस वक्त, उनका देखना है कि अब कितना वहाँ से आएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पर, UAE में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कितना इसके ऊपर असर पड़ेगा वो आगे के दिनों में देखना पड़ेगा।
0: ये जो आंकड़े आज हमारे सामने रखे हुए हैं जिनके हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है?
1: नहीं, बिल्कुल आकर्षक तो है, लेकिन जो निवेशक है वो और भी चीज़ें देखता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि भाई आपके पूरे देश में आपके रिजर्व्स हैं, वो देखता है कि भाई मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितनी आसानी होगी, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये चीज़ें उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें तो होनी ही चाहिए किसी भी देश में अगर वो निवेश करे।
0: इम्पैक्ट तो डालते हैं कहीं ना कहीं।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: With this uptick in the forex reserves, Sushma ji, do you also see this having some effect on the rupee as well?
1: Yes, of course. It has had an impact on the rupee. The rupee has already come to 94.
2: Yes.
1: It's, amazing. Yes. From, nearly 96, it's back to 94. So it has had an impact, definitely.
2: Absolutely. Now, talking of the recent GDP data, projections and so on and so forth. How do you see that kind of, you know?
1: Well, those are of course very positive, especially when April, May, we had anticipated that we are going to have a lot of supply side disruptions, and in the face of that, of course there were hints earlier that you had the GST consumption data was coming in, and you had industrial output data, all sorts of other small bits of data was coming in to show that the situation was good. But this of course is certainly shows the resilience of the Indian economy.
2: Right. Now where is the nominal GDP, that is GDP as at current prices, was estimated by the government to grow at 10.3%.
1: Yes.
2: Now, there has been criticism that this number, when calculated differently,
1: yes,
2: is 2.6%. Now, how is this figure of 2.6% being arrived at? And what is the logic of 10.3 growth rate number?
1: Well, I think, first of all, this particular criticism, which has been talked about a great deal, I think it's a question of comparing apples and oranges. Because I think there's only one person who has made this criticism, and I think everybody has followed to kind of seek clarification subsequently. And the point that was made was that, the actual data showed that for last year's first quarter, showed the economy to be at a size of $88 trillion. Am I correct? Data.
2: Yeah.
1: And it has now been brought down to 80 lakh crores. And so the problem is that this criticism has been made comparing two different series of of GDP data. Because what happens is in any economy, especially an emerging economy like India, every 5 years we do revise our GDP series to account for the changes in the type of production and the type of activities that are going on, economic activities that are going on. Because of COVID and various other factors, this revision has not been taken place for a decade. Mm-hmm. Now, finally, it was implemented from the year 2022-23. Mm-hmm. This announcement was made earlier this year that we

0: The West Texas Intermediate crude was trading 0.6% lower at $90.76 per barrel when reports last came in. What direction, what trajectory this crude is going to take?
1: Oh, that's a very difficult question to answer, because it really depends on global developments, especially geopolitical tensions. As I mentioned earlier, when there was a MOU signed between Iran and the US, and we thought, okay, now another 2-3 weeks everything is going to be wrapped up, prices suddenly fell to about $70, $75 Brent crude. But now when it is clear, then of course there are hostilities continuing between Iran and the US, and there is constant friction over the vessels passing, merchant vessels passing through the Strait of Hormuz.
2: Yes.
1: Brent crude has gone up to $95. And $95 is not a price that is sustainable for a country like ours.
3: और श्रोताओं को बता दें, भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत आज 0.6% बढ़कर 1,54,884 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत 1.2% ऊपर आकर 2,35,456 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है। सोफिया जी, बहुत ही कम शब्दों में सोने की बढ़ती कीमतों पर आपके क्या विचार होंगे?
1: देखिए, जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती रहेंगी, सोने के दाम बढ़ते रहेंगे और चांदी के भी, क्योंकि ये सेफ हेवन एसेट माने जाते हैं। जब कोई भी तकलीफ हो, कोई भी क्राइसिस हो, तो लोग सोना ही खरीदते हैं।
3: सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो वेरी मच सुषमा जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। The benchmark domestic indices rebound. Sensex adds over 350 points. Nifty settles at nearly 23,900. India's foreign exchange reserves surged to a record high of over $740 billion last week. And the global crude oil prices decline. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
6: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्ला सद्येक इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई।

डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और

0: सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विश्लेषण और अनुसंधान क्षमताएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जोड़ी को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organisation has successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Centre at Sriharikota in Andhra Pradesh earlier this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services.
2: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan has also congratulated scientists and engineers of ISRO on the successful launch. The 3-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Suryakant, today held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries including Russia, China, UAE, South Africa, Iran and Uzbekistan. Discussions were held for strengthening of judicial cooperation among the countries, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. The 3-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development, while facilitating an exchange of views among judicial leaders. The death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has reached 1,282. According to Nepal police, the highest number of fatalities

0: சில நொடிகளில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் ஆகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन कर सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण केंद्र और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विश्लेषण और अनुसंधान क्षमताएं बढ़ेंगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा

0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: தொடர்ந்து வந்த பாடல்கள். பத்து தல திரைப்படத்தில் சித் ஸ்ரீராம் பாடியது, அதனை அடுத்து ஜோ திரைப்படத்திலிருந்து ஆனந்த் அரவிந்தாக்ஷன் பாடிய பாடலை கேட்டோம். திரைகானம் நிறைவடைகிறது. இனி செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் ஆகும்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே முகேஷ் குமார். ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का तीन दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का तीन दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत

0: मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
5: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
6: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
5: And recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धारडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल

0: अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
3: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
5: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 9 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13,

0: severely constrained growth. And of course, as we discussed earlier, services exports are providing a natural kind of hedge against this.
1: Listeners, 7.8% growth is more than just a number. It is a reflection of confidence, resilience and opportunity. Mr. Sharad Kohli and Mr. Dilip Chinoy, thank you, gentlemen.
0: Thank you, Sabji.
2: Thank you. It was a pleasure.
3: You were listening to a discussion on India's economic growth amidst global economic headwinds. The participants were Sharad Kohli and Dilip Chinoy, economic analysts. The moderator was Sarabjit Kaur.
4: Current Affairs.
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
6: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा का केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने बताया कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वर्षों में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पतन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर ने आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
7: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवा

0: नेताओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल के गणपतियार मंदिर में लाल चौक पर शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के विस्तु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स कारूप रस्मुयेन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, स्वच्छ कोयला और अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौतों पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली गणतंत्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार को नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्तों को मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। राजधानी वारसो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में

0: 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धांडिंग में 60, तनहु में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हुई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों व उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल जैसे विषयों पर विमर्श हुआ। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मामलों के मंत्री प्रोफेसर फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने पेरिस में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में भारत की भागीदारी और बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में फ्रांस की भागीदारी पर चर्चा की।
1: बैठक के दौरान डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में भाग लेने और फ्रांस के साथ अंतरिक्ष साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और सुरक्षित अंतरिक्ष पर ध्यान दिया जाएगा। यह अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। भारत ने बाहरी अंतरिक्ष के टिकाऊ इस्तेमाल, अंतरिक्ष आधारित वैज्ञानिक डेटा की सुलभता, खुलेपन और अखंडता और फ्रीक्वेंसी प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार यूनियन के निर्णायक ढांचे के समर्थन पर सम्मेलन के प्रस्तावित नतीजों का स्वागत किया। फ्रांस के मंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और फ्रांस के मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने और उसे गति देने की फ्रांस की इच्छा व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत का दौरा करेगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता रणनीतिक खुलेपन, विश्वास और आपसी सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत करेगा। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एड्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चैक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात अनहा सिंह का मुकाबला मलेशिया की शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम की नेले ग्लिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, स्वच्छ कोयला और अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौतों पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: முகமது சுபேர். ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का तीन दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहाँ युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। श्री कृष्ण जन्म स्थान से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं श्रीयुत श्री कृष्ण और श्री देश दीपक मिश्रा। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। आइए सजीव प्रसारण के लिए मथुरा चलते हैं।
1: कृष्ण की लीला स्थली ब्रज धरा धाम को शत शत नमन वंदन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पावन पवित्र मोक्षदायिनी मथुरा नगरी के जगत विख्यात श्री द्वारिकाधीश मंदिर से मैं डॉक्टर मीनू खरे अपने साथी कमेंटेटर्स डॉक्टर नृत्य गोपाल और कृष्ण जन्म स्थान से श्रीयुत श्री कृष्ण व देश दीपक मिश्रा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, अशेष मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। तीनों लोकों से न्यारी मथुरापुरी में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्म उत्सव। इस अवसर पर मथुरा नगरी कुछ यूं सजी है मानो कोई नववधु अपने प्रियतम का स्वागत करने जा रही हो। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर करती हुई ये वही नगरी है जिसके स्थापना भगवान राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने आततायी लवणासुर के वध के पश्चात किया था और कालांतर में द्वापर युग में इसी नगरी को चुना। भगवान श्री कृष्ण ने आततायी कंस के नाश और सत्य मूल्यों की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज के दिन सभी को प्रतीक्षा आगत के स्वागत की अजन्मे के जन्म की। कृष्ण का जन्म इस संसार का सुंदरतम क्षण है। मेरो मन आनंद भयो ब्रज राज ही याचन आयो अपने अपने मन की मतो कही सब परिवार पठायो। अधर्म के नाश हेतु साक्षात परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप वासुदेव जनार्दन रसेश्वर सर्वेश्वर ब्रिजेश्वर योगेश्वर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण से इस धरा को धन्य किया। आज उसी दिव्य और अलौकिक घटना की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति के साक्षी बनने को उत्सुक आज यहाँ उपस्थित हर जन हर भक्तगण कण कण से प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। यशोदा नंदन नंद दुलारे कन्हैया के आवन की कड़ी जो है महोत्सव चारों ओर है। परमानंद आज यहाँ साक्षात बरसता हुआ उल्लास और उमंग में सराबोर श्रद्धा का सागर आज भक्तों के मन में उमड़ता हुआ। सभी कंठों से राधे कृष्ण की वाणी गुंजायमान होती हुई आज की रात याद दिलाती है द्वापर युग की उस विलक्षण और अलौकिक घटना की जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र सूर्य नारायण सिंह राशि में और चंद्र वृष राशि में अवस्थित थे तभी कान्हा ने जन्म लेकर इस धरा को धन्य किया। यूं तो आज श्री द्वारिकाधीश मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं ऋतुराज के दर्शन के लिए, परंतु हर किसी की प्रतीक्षा मध्य रात्रि की जब कान्हा प्रतीकात्मक रूप से एक बार पुनः प्रकट होंगे। एक बार पुनः ब्रज की धरा धन्य होगी कन्हैया के अवतरण से। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन। श्री यमुना महारानी के विश्राम घाट और अस्कुंडा घाट के बीच बसे श्री द्वारिकाधीश मंदिर में आयोजित कान्हा के जन्म का ये उत्सव अद्भुत विलक्षण और अलौकिक प्रतीत होता है।

0: रंगीन प्रकाश में नहाया हुआ ये प्रांगण मानो किसी और दुनिया में ले जाता प्रतीत होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर मथुरा नगरी ही मात्र ऐसा स्थान है जहां ब्रह्म और शक्ति एक साथ प्रकट हुए। गीता के पुरोधा लीलाधारी कृष्ण और अष्टभुजा माँ योग माया की प्राकट्य भूमि होने के कारण आज इसका महत्व वैकुंठ से भी अधिक है। ब्रज की महिमा को कहे को बरनई ब्रज धाम, जहां बसत हर सांस में श्री राधे घनश्याम। और अब आगे का हाल, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए डॉक्टर नृत्य गोपाल।
1: धन्यवाद डॉक्टर मीनू खरे। नमस्कार, मैं नृत्य गोपाल राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर मथुरा से बोल रहा हूँ। आज के मंगल उत्सव में आकाशवाणी के माध्यम से जुड़े सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। धन्य धन्य ब्रजभूमि जहां प्रगटे वनवारी। जी हाँ श्रोताओ, यह ब्रजधरा वंदनीय है, पावन मथुरा नगरी अभिनंदनीय है, जहां पर हमारे ब्रजराज लाडले कृष्ण कन्हैया ने यहाँ इस धरा पर जन्म लिया। ब्रजराज श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में आज यह मथुरा नगरी, यह द्वारकाधीश मंदिर दिव्यता और भव्यता की अद्भुत संगम बना हुआ है। और इस संगम में जहां से हम आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, उसके ठीक सामने द्वारकाधीश महाराज जी का श्री विग्रह विराजित है। और इस समय विग्रह स्थल के पट बंद हैं और बहुत सुंदर सा प्रीत वर्णी ये जो पर्दा आया हुआ है, जिसमें झिलमिल सितारे लगे हुए हैं, जिसकी आभा से ये पूरा भवन, ये पूरा प्रांगण आलोकित हो रहा है। और ठीक द्वार के बाहर जगमोहन में कुछ हिस्से को बहुत सुंदर सी रेलिंग से घेरा हुआ है। इस परिधि के भीतर सेवायत जन, जो सिर्फ उन्हीं का प्रवेश यहाँ पर वांछनीय है, वही इसमें भीतर है। सेवायत जन अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ठीक यहाँ पर इतने सुंदर हल्दी के

समस्त तीर्थ वहां पर एकत्र हो जाते हैं। तो यहां आने वाले श्रद्धालुओं को इस समय न केवल हमारे परमात्मा श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकी देखने का सुअवसर मिलेगा, बल्कि समस्त तीर्थों का जो पुण्य है वो भी उन्हें मिलेगा। जहां से हम ये आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं वो भागवत भवन है, श्री कृष्ण जन्म स्थली का वो मुख्य भवन, जहां पर पूजन अर्चन होता है और जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्षदायिका, मथुरा मोक्षदायिनी नगरी है और इस मोक्षदायिनी नगरी में पहुंच चुके हैं। लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ बड़े ही अनुशासित ढंग से भागवत भवन में प्रवेश करते हैं और मुख्य विग्रह के सामने आकर ठिठकते हैं। मुख्य भवन में जो विग्रह हैं उन पर जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो अपलक हम उन्हें निहारते रह सकते हैं। आज परमात्मा का जो विशेष श्रृंगार है वो अद्भुत और अनूठा है। प्रतिवर्ष की तरह जैसे भगवान की पोशाक होती है वो अनूठी है, इस बार भगवान ने पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं और इस वस्त्र को पंच रत्नी पोशाक नाम दिया गया है। ये पंच रत्न उस पर जरी और काम के साथ हीरे जवाहरात माणिक्य के साथ अंकन किए गए हैं। वो पंच रत्न हैं जो समुद्र मंथन में निकले हुए थे, श्री हरि विष्णु के पास आए थे और उनका संबंध श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। कामधेनु गाय, पांचजन्य शंख, अमृत कलश, एरावत हाथी जो कि श्री हरि विष्णु को मिला था, उन्होंने बाद में इंद्र के मांगने पर उन्हें दे दिया था, और कल्प वृक्ष अंकित हैं। इतनी सुंदर मनमोहक छवि है भगवान ने। मुकुट जो धारण किया है वो अद्भुत और अनूठा है। स्वर्ण जड़ित इस मुकुट में अनेकों माणिक के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और वो सब अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। इतरा इसलिए नहीं रहे हैं कि उनमें हीरे जवाहरात और माणिक्य लगे हुए हैं, बल्कि इसलिए इतरा रहे हैं कि हमारे परमात्मा ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया है। भगवान ने कंठाहार पहन रखा है, हाथों में चूड़ा है, कमर में करधनी है। उनके आभूषणों के साथ उनकी सज्जा देखने लायक है। जब दृष्टि पड़ती है तो अपलक लोग देखते रह जाते हैं। राधा रानी की आंखों से बरसती हुई करुणा मानो सभी को सम्मोहित कर ले रही है। उनके पीतांबर वस्त्रों को देखकर लोगों के आंखों से अश्रु छलक पड़ते हैं। जो सुंदर सजावट की गई है वो भगवान के पुष्प बंगले की है, जिसे कल हंस पुष्प बंगले का नाम दिया गया है। सुंदर हंस बने हुए हैं जो कि श्वेत रंग के पुष्पों से बनाए गए हैं और गुलाबी रंग के पुष्पों से उनके पंख हैं। नीले रंग के मयूरों की आकृति है। श्वेत, गुलाबी और हरे रंग के पुष्प और पत्तियों का सुंदर समावेश किया गया है। एक ऐसी अद्भुत चित्ताकर्षक झांकी है जिसे देखते हुए श्रद्धालु यहाँ पर ठिठक जाते हैं। और ये वातावरण पूरी मथुरा में छाया हुआ है। मथुरा जो कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति और आस्था का एक केंद्र है, वो स्वागत करने के लिए तैयार है। समस्त द्वारों पर जो तोरण द्वार बने हैं वो मुस्कुरा कर स्वागत करते हैं। मथुरा के समस्त चौराहों पर रेशमी वस्त्रों, गुब्बारों, विद्युत लड़ियों और खिलौनों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रवेश करते ही श्रद्धालु अपलक निहारते रहते हैं अपने कान्हा की इस धरती पर जहां पर उन्होंने लीलाएं की थी। मथुरा के प्रवेश द्वारों पर की गई सजावट सभी का स्वागत कर रही है। स्वागत तो यहां पर भागवत भवन में श्रद्धालुओं का भी हो रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं तालियां बजाते हुए, श्री हरि बोल के नारों से गुंजायमान कर रखा है और तालियां बजा के आते हैं। बस एक ही अभिलाषा होती है कि अपने प्रभु की छवि को किस तरह निहार ले। उस मनोरम छवि को सदैव के लिए मानस पटल पर अंकित करना चाहते हैं। ठिठकते हैं, लेकिन जो सेवायत हैं, जो हमारे यहाँ व्यवस्था में लगे लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनकी श्रद्धा आहत ना हो धीरे से कंधे पर थपकी देकर उन्हें आगे बढ़ने का एक इशारा कर देते हैं। बाहर आज बारिश भी कुछ देर पहले बहुत तेज हुई थी। ऐसा लगता था कि द्वापर का वो दृश्य जीवंत हो गया जब परमात्मा ने यहाँ पर जन्म लिया था। श्रद्धालुओं का अगर मथुरा में प्रवेश होता है तो जगह जगह उन्हें कृष्ण की लीलाएं दिखती हैं। कटआउट लगे हैं, झांकियां सजी हैं, ध्वनि और संगीत के प्रभाव से वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही हैं, मोह रही हैं। माखन चोरी है, रासलीला, नाग नथैया, कृष्ण जन्म, गौचारण जैसे तमाम प्रसंग हैं जो कि वहां पर अंकित हैं। तो ये सब कुछ दिव्य है। 11 बजे से यहाँ पर पूजन, जो विशेष पूजन है वो चल चुका है। 1008 सहस्त्रार्चन से करते हैं, पुष्प कमलों को चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह का पूजन हुआ और सहस्त्रार्चन चल रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं, सहस्त्रार्चन के साथ साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह भी अनवरत हमारे बाई तरफ से निकलता है और दाहिनी तरफ से चला जा रहा है। ये जो दिव्य शोभा है, ये जो अद्भुत वातावरण है, इसे शब्दों में व्यक्त करना नितांत असंभव, लेकिन फिर भी मैं श्रीयुत श्री कृष्ण जी को
ये माइक्रोफोन देता हूँ आगे का विवरण देने के लिए।

बहुत बहुत धन्यवाद देशदेव दीपक जी, एक बार पुनः श्री कृष्ण स्थान से स्वीकार कीजिए श्री कृष्ण का सादर प्रणाम, और आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस समय यहाँ भागवत भवन में जहाँ ठाकुर जी अपनी आलादरी शक्ति श्री राधा रानी के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और इस समय भक्तों का आने का सिलसिला एकदम अचानक से बढ़ गया है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उल्लास से, उमंग के साथ राधे राधे का जय घोष करते हुए भागवत भवन की ओर बढ़ते चले आ रहे, और यहाँ पर उनकी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि देश के सुदूर प्रांतों से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, और वर्ष पर्यंत उनके मन में बस एक ही भावना रहती है कि कब वो अद्भुत पलाएं, जब वो भगवान के प्राकट्य उत्सव का, अपने लाला के आगमन की प्रतीक्षा के लिए उनके यहाँ पर भागवत भवन में अपने प्रभु के दर्शन करने आए। जब अजन्मे का जन्म होता है, पालनहार प्रकट होते हैं, उस समय भागवत भवन में रहना अपने आप किसी पुण्यों के संचित लाभ से प्राप्त करने से कभी भी कम नहीं होता है। और इस समय जो भक्त आ रहे हैं, जैसे ही भगवान के सामने आते हैं, हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री राधे का जय घोष करते हैं, और यहाँ पर भगवान जैसा नाम है कृष्ण, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार जो उनकी ओर देख लेता है, बस उनका होकर रह जाता है, पांव ठिठक जाते हैं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। लेकिन जो सेवायत है, सुरक्षा प्रहरी है, बड़े ही अनुनय विनय के साथ, विनम्रता के साथ उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है, उन्हें अपने स्थान पर रुकने भी नहीं देता है। और न केवल भागवत भवन, अगर मैं बात करूं श्री कृष्ण जन्म स्थान में, यहाँ पर मुख्यतः तीन मंदिर और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ठाकुर केशव जी का मंदिर है भागवत भवन के अलावा, और वो गर्भगृह क्रूर कंस के कारागार का वह भाग जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, और उस कारागार को आज इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है, बिल्कुल कारागार का दृश्य उपस्थित हो रहा है। और कारागार के प्रवेश द्वार के पास योग माया मंदिर है, जहाँ पर आज योग माया ने एक विशेष स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है, और उस कारागार में जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, धन कंस का कारागार, हर ने लिया जहाँ अवतार, ये बंदी वसुदेव देव की स्तुत करते उन देव देव की। और यहाँ पर आज भागवत भवन में इस समय भजन गाया जा रहा है, तमाम श्रद्धालु तालियां बजा बजा कर मंजीरे की धुन में, शंख के साथ में, झान मंजीरे के साथ में भजन गा रहे हैं। और यहाँ आज बड़े सवेरे मंगल आरती हुई शहनाई नगाड़ों के साथ, और उसके बाद सुबह 8 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक किया गया ठाकुर जी का, और पवित्र श्लोकों का पाठ किया गया, और करीब 8 बजे के आसपास पुष्पार्चन हुआ, और इस बार पुष्पार्चन में गौ रक्षा के साथ देश रक्षा का संकल्प लिया गया। इसके बाद मंगलार्चन, वेद मंत्रों के मध्य युगल सरकार के शिष्यों में पुष्पांजलि यहाँ पर की गई, और उसके आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर गणेश पूजन और नवग्रह पूजन के साथ यह पूरा जन्मोत्सव कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ है। और भागवत वन के ठीक सामने जो यहाँ पर एक लीला मंच बना हुआ, आज वहाँ पर प्रयोजन लीला आयोजित की जा रही है कि भगवान ने किस कारण से यहाँ पर अवतार लिया था, उसका यहाँ पर आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित है। और जो सामान्य दिनों में यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण सारथी की भूमिका में अर्जुन को गीता को उपदेश दे रहे हैं, आज वहाँ से निकासी है। और जो सामान्यतः जो दूसरा दरवाजा होता है प्रवेश द्वार, वहाँ से प्रवेश ले रहे हैं, और साथ साथ इस पूरे मथुरा नगरी को बहुत ही आकर्षक ढंग से रंग बिरंगी विद्युत झालों से, रंग बिरंगी पताकाओं से, और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कहीं माखन चोरी की लीला है, कहीं गाल ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी कर रहे हैं, उनसे जगह जगह सजाया गया है, और अनेक सांस्कृतिक मंच बनाए गए। उन सांस्कृतिक मंचों में यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। और जैसे द्वापर में जब भागवत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो स्थितियाँ बनी थी, आज वही स्थिति यहाँ बन रही है। आज बारिश भी हुई है, यहाँ पर बिजली भी चमकी है, काली अंधेरी रात भी है, लेकिन उस समय गहन अंधकार था, आज मथुरा नगरी का कण कण प्रकाशवान है। ऐसा प्रदृश्य, शायद अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, और पूरी मथुरा नगरी पे एक बड़े मेले जैसा आयोजन है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं, और जो कान्हा की नगरी है तो कोई भी श्रद्धालु भूखा कैसे रखता है। जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे लगाए गए हैं, जहाँ पर विभिन्न तरह के पकवान, बड़े अनुनय विनय के साथ आने वाले श्रद्धालु

0: लोगों को परोसे जा रहे हैं, उनसे विनती की जा रही है हे लाला साथ तो ले लो। और जैसे ही यहाँ पर लोग भागवत भवन की ओर प्रवेश करते हैं, वे मंदिरों की ओर जाते हैं, तो देखते हैं कि हर मंदिर, हर मठ, हर घर में आज कान्हा की विशेष झांकी सजाई गई है। आज कान्हा का जन्म होगा और उस जन्म में पूरा ब्रजमंडल ही नहीं, जहां जहां भी यहाँ पर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी अपने लाला के प्राकट्योत्सव पर बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ लाला का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस समय श्री द्वारकाधीश मंदिर में क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है, आइए और दृश्यों के लिए चलते हैं डॉक्टर मीनू खरे के पास।
1: धन्यवाद श्री कृष्ण, आप सभी को एक बार पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये रात्रि मोह रात्रि कही जाती है। कान्हा के रूप ने मोह लिया इस ब्रह्मांड का, दीपमाला ऐसे जगा दिया। और देखिए राजाधिराज की जय बोली जा रही है, क्योंकि द्वारिकाधीश का ये मंदिर, इसका नाम श्री द्वारिकाधीश मंदिर यूं पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के स्वामी हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इस मंदिर के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरिग्रह कहा जाता था। और आज इसी हरिग्रह में, हरि के चरणों में बैठकर आंखों देखा हाल जन्मोत्सव का आप तक पहुंचाने का ये सौभाग्य आकाशवाणी की तरंगों का और उसकी पूरी टीम का। ब्रज की रज जाको मिल गई, बाकी चाह न शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा की गुंजार होते हुए ध्वनि एक मंत्र जैसा सभी भक्ति भावना में लीन। चारों ओर भक्तजन अब उत्सुकता बढ़ती हुई। श्री यमुना जी के तट पर बसे द्वारिकाधीश मंदिर का सौंदर्य आज अनुपम छटा बिखेर रहा है। असंख्य रंग बिरंगे पुष्पों, तोरणों, रंग बिरंगी झालरों, कुमकुमों, बंधन वारों से सजे स्तंभ द्वार और झरोके मानो पुष्प बगिया के स्वर्गीय द्वार हों। इस क्षण का सौंदर्य शब्दों से परे है, मानो शब्द भी प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए हों। तीतर पाखी बादलों की झूमती हुई छटा और बयार की इटलाती लहरियां, और आज झूमती हुई लहराती हुई बादलों की ये घटाएं और बारिश अनायास ही याद दिला देता है वो लोकगीत। और देखिए एक बार पुनः राजाधिराज की जय। भादो मास रैन अंधियारी, जन्मे कृष्ण मुरारी ना। आज प्रकृति स्वयं बाहें फैलाकर मानो कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। वातावरण में आध्यात्मिकता है, दिव्यता है, उस अलौकिक पल की आहट आज हर बीतते पल में मानो उत्तेजना, उत्सुकता और अधीरता उत्पन्न करती प्रतीत होती है। अजन्मा आज जन्म लेगा, अनंत अपरिमेय आज समा जाएगा माँ की गोद में। जग के अश्रु पोंछने वाले का शिशु क्रंदन सुनकर आज हर श्रद्धालु की आंखों में होंगे अपरिमित आनंद के अश्रु। जग का पालनहार आज स्वयं पालने में होगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई कछु गावे। मध्य रात्रि का घना अंधकार है, लेकिन गोकुल में उजियारा फूटने ही वाला है। श्री यमुना महारानी भी अपनी लहरों में नेह के मोती बरसाती प्रतीत होती हैं। चारों ओर उल्लास, आनंद और भक्ति का अद्भुत समागम आज यहाँ चारों ओर व्याप्त दिखता है। यमुना महारानी अपने अद्भुत श्रृंगार में सजी हैं। उनकी लहरों पर चांदनी का रेशमी आभूषण मानो झिलमिला रहा है। लहरों की तरंगे वीणा की झलकार जैसी प्रतीत होती हैं। आज वे स्वयं को सजाकर खड़ी हैं, क्योंकि ब्रज का नन्हा नंदलाल स्वयं नटनागर उनकी गोद से पार होकर गोकुल जाने वाला है। यमुना महारानी आज केवल नदी नहीं है, उनकी व्यग्रता उफन कर शिशु कृष्ण के चरण छू लेने की है। देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, चरणों को छू भर लिया हुई सांवरी देह। और अब अगली आवाज डॉक्टर नृत्य गोपाल की।
2: डॉक्टर मीनू खरे, आप इस समय देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ, हम जिधर देख रहे हैं चारों ओर श्रद्धालु, अपार जन समूह इस समय श्रद्धावन

0: होकर के अजन्मे के जन्मोत्सव की पावन घड़ी का पल पल बाट जो रहा है और हम देख रहे प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे कन्हैया के प्राकट्य की घड़ी पास आती हुई वैसे वैसे जय घोष से गूंजों से मंदिर परिसर ऐसे गुंजायमान हो रहा है जैसे कि गगन भेदी ये स्वर यहाँ पर सबको आह्लादित उमंगित कर देता है। इस उल्लास के वर्णन करना हम इन शब्दों में जैसे जैसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर का यह आंगन, द्वारकाधीश की जय, वसुदेव नंदन की जय, देव की नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन के जयकारों के साथ गूंज रहा है। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फर चंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस कन्हैया लाल की जयकारे के साथ ये माखन चोर कृष्ण आज जब इस मथुरा भूमि पर यहाँ पर पधार रहा है तो यहाँ पर भक्तों का ही जो समूह है इनका नृत्य देखने लायक है और बहुत सुंदर देखने लायक यह भी है कि देश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये जो सामने से एक टोली जा रही है लग रहा है कहीं विदेश से आए हुए हैं और इन्होंने कितने सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए, वो कभी बांसुरी को देखते हैं कभी मोर पंख को देखते हैं और कैसे हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और क्या है कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा क्रीड़ा स्थली गोकुल, लीला स्थली नंदगाम, बरसाना दिव्य महाराज की पावन धरा वृंदावन की छवि आज अलौकिक है और जनमानस भावातिरेक में बार बार यही गाए जा रहा है। बड़ो भाग नंद रानी तेने पायो, तेरो पुत्र जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। आस्था और संस्कृति के इस जीवंत आज के इस अवसर पर जहाँ पर सदियों पुरानी परंपराओं का जिस तरीके से निर्वाह और उसको लोक में उतारने का अद्भुत जो एक क्रम द्वारकाधीश मंदिर से और यहाँ के सेवायत धन्य है देख रहे हैं। जैसे जैसे समय पास आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पर हलचल होने लगी है, कुछ सेवायत इस समय थालों में भर करके बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री ला रहे हैं। और आज हमने प्रातःकाल यहाँ के सेवायतों से बात की, एक विशेष भोग यहाँ पर आता है धनिये की पंजीरी के साथ सौंठ के लड्डू ये यहाँ का, और सीरा जो कि ब्रिज का अपना ही प्रसाद है उस सीरा का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। और देख रहे हैं कि धीरे धीरे कितने सुंदर सजे हुए हमारे ये जो यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ इनको मुखिया जी कहा जाता है और बड़ा बड़ा सुंदर क्रम यहाँ पर सेवायतों का, लेकिन सुंदर सुंदर वस्त्रों में थाल लिए हुए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि संभवतः इसमें दधि दूध मक्खन घृत शर्करा ये सब अभिषेक के लिए लाया जा रहा है। और प्रातः काल भी यहाँ पर अभिषेक हुआ, श्री कृष्ण की जन्मपत्री का वाचन हुआ और अब इस समय जब कन्हैया के जन्म की घड़ी पास आ रही है तो जैसे जैसे ये जैसे पर्दा हिलता तो भीतर हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हमारे श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह आ जाता है, उन्हें लगता है कि पर्दा खुलने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां तो भीतर से कुछ ना कुछ सामग्री लाई जा रही है। और इस सामग्री में कौन कौन सी सामग्री होगी हम थोड़ी देर में बताएंगे। डॉक्टर मीनू खरे आप देख रहे हैं कितनी हलचल होने लगी है श्रद्धालुओं में,
1: बहुत बढ़ती हुई व्यग्रता उत्कंठा उल्लास मानो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ। आज इस समय श्री द्वारिकाधीश मंदिर में जो कि जहां पर बल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के संरक्षण में पूजा अर्चना की जाती है, पुष्ट मार्गी सेवा प्रणाली के अंतर्गत आज भाव भोग श्रृंगार की प्रधानता है। यहाँ पर बाल भाव की सेवा की जा रही है, भगवान का यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है और यहाँ पर जय जयकार के नारे भगवान के, लोग अब उनसे प्रतीक्षा के पल बहुत भारी हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई दीर्घाओं में, दर्शक दीर्घाओं में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए उनके वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं जहाँ से कम एक बार वो देख को लें। आप श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर। एक आकाशवाणी द्वापर युग में भी हुई थी जब कि हे कंस देवकी का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा, लेकिन एक के बाद एक सात पुत्रों को मारा गया पर जिसे भगवान बचाए, जब भगवान स्वयं अवतार ले तो फिर किसकी क्या विसार। चारों ओर अंधकार था पर प्रकाश का अद्भुत संचार होने वाला था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में

0: प्रकट हुए, संकादि ऋषि स्तुति करने लगे। वासु सर्व निवास परम पुष्प वासुदेव, देवकी वासुदेव विस्मित माँ ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी संतान के इस दिव्य रूप के आभा सहने की नेत्रों में क्षमता नहीं है। और देखते देखते चतुर्भुज रूप नीलमणि सी कांति वाले द्विभुज बालक के रूप में बदल कर बाल रूप में रुदन करने लगे। ऐश्वर्य का विस्मरण हुआ और वात्सल्य उमड़ पड़ा। वसुदेव ने शिशु को गोद में उठाया, पांवों की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए और एक नई यात्रा की ओर चल पड़े वासुदेव कृष्ण को लेकर। मानो अपने यमुना नदी ज्योति उफान पर थी, वो धीमे धीमे, और अब यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा हो गए हैं। चारों ओर जिधर भी देखिए आपको भक्तगण दिखेंगे, उनके अंदर अद्भुत सामंजस्य है। भीड़ होने के बाद भी उनके अंदर सामंजस्य है और वो एक दूसरे को किनारे होकर जगह दे रहे हैं खड़े होने की। और हमारे बीच में ब्रज संस्कृति साहित्य के विशेषज्ञ और समालोचक आशुतोष शुक्ल जी हैं। अगली आवाज आप सुनेंगे आशुतोष शुक्ल।
1: अब वह घड़ी निकट है जब लाला का अवतार होने वाला है। अवतार ऐसा क्षण है जो बड़ा ही भक्तिपूर्ण होता है। यह अवतार का क्षण भावनाओं का चरम शीर्ष होता है, भक्ति का चरम शीर्ष होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। भागवत कहता है, निशीथे तम उद्भूते जाय मने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाश्यः आविरासीत यथा प्राच्यम दिश इंदु इव पुष्कलः। जिसका भावार्थ है, मध्य रात्रि के उस दिव्य समय में जब भगवान जनार्दन का प्राकट्य हुआ, तब सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। इसी बीच मंदिर के पट खुल गए हैं, पर्दा हट गया है और श्री द्वारिकाधीश जी महाराज के दर्शन सबको सुलभ हो रहे हैं। और हम इसी के साथ ही भागवत के उस क्षण पर चलते हैं जब माता देवकी और पिता वसुदेव ने अपने दिव्य बालक के दर्शन किए, तो उन्होंने देखा कि वह साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में अवतरित हो चुके हैं। भागवत कहता है, तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि युदायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गल शोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। इसका भावार्थ है, वसुदेव ने उस अद्भुत बालक के दर्शन किए जिसके नेत्र कमल के समान थे, वे चार भुजाओं वाले थे, उनके हाथों में दिव्य आयुध थे, उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनका स्वरूप वर्षा के गहरे मेघ के समान अत्यंत मनोहर था। ऐसे अलौकिक स्वरूप को देखकर देवकी और वसुदेव का हृदय आनंद आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वे समझ गए कि जिन परमात्मा की उन्होंने आराधना की, वही आज पुत्र रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि प्रभु अपने इस दिव्य स्वरूप को छिपाकर सामान्य बालक का रूप धारण करें ताकि कंस के इस दिव्य प्राकट्य का ज्ञान न हो। श्रीमद् भागवत में माता देवकी की यह प्रार्थना अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में आती है, उपसंहर विश्वात्मन अदह रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। इसका भावार्थ है, हे विश्वात्मा अपने इस अलौकिक चतुर्भुज स्वरूप को अब छिपा लीजिए। शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित यह दिव्य स्वरूप अत्यंत अद्भुत है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप सामान्य बालक के रूप में अपनी लीला प्रारंभ करें। यही वह अद्भुत क्षण है जहां परम सत्ता ने प्रेम के लिए स्वयं को सीमित कर लिया। जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वही माता पिता की गोद में आने के लिए तैयार हो गए। यही भगवान और भक्त के संबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के साथ मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कृष्ण जी के।
2: धन्यवाद आशुतोष शुक्ला जी, क्या ही सुंदर पल, अद्भुत घड़ी।

0: और जिस घड़ी की प्रतीक्षा सभी को थी और इस समय पारकाधीश मंदिर के ये पट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं की अपलक निहारने की ये जो कला, ये जो दृष्टि और वो जो कन्हैया को अपने नेत्रों में भरने की ये जो ललक है, श्रद्धालु इस समय राजाधिराज द्वारकाधीश की अनुपम छवि को एकटक अपलक होकर निहारे जा रहे हैं। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, शंख ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि, नफीरी की ध्वनि, क्या आज के इस धन्य यशोदा भाग्य त्योहारो जिन ऐसा सुत जायो। आज द्वारकाधीश प्रभु का अलौकिक श्रृंगार हम देख रहे हैं ठीक सामने। इस श्रृंगार को भारी श्रृंगार कहा जाता है और यहाँ आभूषण और अलंकारों से सुसज्जित द्वारकाधीश अवर्णनीय छवि, भक्तजन मंत्र मुग्ध आकर्षित हुए जा रहे हैं। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ पर मुक्ताहार, मणियों की मालाएं, कलाइयों में कंगन, सुंदर करधनी युक्त आभा परवश अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। जो जहाँ खड़ा है वहीं पर ठगा सा रह गया है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मनमोहन के साथ मनमोहक भी लग रहे हैं और संभवतः यही वह श्रृंगार है, यही वह सौंदर्य है, यही वह आकर्षण रहा होगा जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक में लिख दिया, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वसनम मधुरम, चरितम मधुरम, वचनम मधुरम, वलितम मधुरम, चलितम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आज लोकमानस, जनमानस का उत्साह, उमंग और श्रद्धालुओं में इस समय बहुत तीव्रता से हर कोई चाहता है कि मैं तुरंत आगे जाऊं और अपने कन्हैया को, अपने द्वारकाधीश को, उनके बगल में विराजित रुक्मणी जी को यहाँ जाकर के निकट से देख लूं, दर्शन कर लूं, या मुरली मनोहर की अद्भुत छवि उसका दर्शन कर लूं। और कभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं, कभी सामने पर्दे पर नाचते हुए मोरों की छवि देख रहे हैं और लेकिन पुनः सभी की दृष्टि अपने अपने द्वारकाधीश के चरणों में लगी हुई है। और पुष्टि मार्ग में यही कहा जाता है, चरणों से ऊपर की ओर जैसे जैसे दर्शन किए जाएं, कुंडल की छवि अद्भुत है, क्या ही सुंदर ये मुकुट की छवि। आप जिस अंग को देखें, जिस जगह से देखें, मेरे कन्हैया को यहाँ पर देखना और ये देखते देखते यहाँ पर आतुरता से बाट जो रहे बाहर जो श्रद्धालु खड़े थे, अब वो धीरे धीरे धीरे धीरे आगे आ रहे। और धन्य है ये ब्रजवासी और धन्य है ये सेवायत। आप अद्भुत देखेंगे, जिसको भी किसी को कष्ट ना हो, जो यहाँ पर सेवक लगे हुए हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, सिर्फ सबसे यही कहते हैं राधे राधे राधे, जरा आगे चलो। और ये ब्रज में जैसे जैसे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, इसकी गूंज के संग ये ब्रजवासी आगे आ रहे हैं, ये यहाँ पर श्रद्धालु आगे आ रहे हैं। और किसी को असुविधा ना हो इसके लिए हमारे ये जो व्यवस्था में लगे हुए सेवक हैं, इनका भी कहना क्या, इनको धन्यवाद। और इस समय चलते बहुत सुंदर झांकी के लिए, वहां पर भागवत भवन में श्री कृष्ण जन्म स्थान से क्या दृश्य, क्या मनोरम छवि है, इसके लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन।
1: अद्भुत है हमारे कन्हैया के जन्मोत्सव की ये छटा। ये संपूर्ण अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सप्तपुरिया ही नहीं, स्वर्ग से देवता भी लालायित होकर इस दृश्य का साक्षात्कार करने के लिए एकत्र हो गए हैं। और सबकी दृष्टि समय पूरे ब्रजमंडल पर है, जहां हर घर में कृष्ण जन्म के आनंद की बधाइयां गाई जाने लगी हैं, क्योंकि वो क्षण अत्यंत निकट आ गया है जब परमात्मा एक बार पुनः अवतरित होंगे प्रतीक रूप में इस धराधाम पर, हम सभी को आश्वस्त करने के लिए। यहाँ भागवत भवन के जो विग्रह है वहां पर सहस्त्रार्चन पूर्ण हो चुका है, वहां पर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं भगवान के जन्म के समय उनके विशिष्ट पूजन की। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अनवरत बढ़ता चला जा रहा है, वो बाई तरफ से प्रवेश करते हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं। और अब यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा विविध रूपों में परिलक्षित हो रही है। बच्चों को उन्होंने कान्हा बना रखा है, कोई राधिका बनाए हैं, उन्हें जब लाते हैं विग्रह के सामने तो अपने कंधे पर बैठा ले रहे हैं, ठिठकते हैं, लेकिन एक बार पुनः विवशता है क्योंकि पीछे से प्रवाह भगवती यमुना के समानांतर चला आ रहा है। परसों से ही लगातार जब श्रद्धालु इस धराधाम पर आ रहे थे तो देखकर लगता नहीं था कि कैसे इतने श्रद्धालु इस ब्रज मंडल में समाएंगे, लेकिन ममता मई माँ की तरह इस पूरी धराधाम ने सभी को समाहित कर लिया है। सामने छोटे जगमोहन में पुजारी विराजमान हो चुके हैं, वहां पर

0: जो स्वर्ण और रजत के चौकियां हैं वो लग गई हैं, जहां पर कुछ ही पलों के बाद प्राकट्य के बाद भगवान की आरती होगी, वहां पर वो अपने दर्शन देंगे। और जो बड़ा जगमोहन कह सकते हैं, जिसे आज घेर कर विशेष रूप से बनाया गया, कुछ विशिष्ट जन बैठे हैं, तालियां बज रही हैं, वहां पर इस समय भजन चल रहा है और लोग भजन में नृत्य भी कर रहे हैं, आह्लादित है कि कृष्ण जन्म का ये उत्साह है। यहाँ पर आज कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ड्रोन के द्वारा बाहर भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को भी दिखाया जाएगा, साथ ही साथ काशी और अयोध्या से भी भगवान के लिए विभिन्न पोशाक और उनके साथ लिए प्रसाद आया है वो भी चढ़ेगा, क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या इन तीनों को स्थलों को जोड़कर एक विविधता की गई है। यहाँ पर जब आते हैं तो मुख्य विग्रह के ठीक दाहिनी तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के विग्रह भी विराजमान हैं, और उनके ठीक सामने हनुमंत लाल उनके दर्शन करते हैं, जबकि मुख्य विग्रह के बाईं तरफ बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी हैं, जो कि ब्रज की संस्कृति और पुरी के उड़ीसा की परंपराओं का एक वैशिष्ट्य पालन है। सामने एक शिवलिंग है और उसके ठीक सामने भगवती दुर्गा जी हैं, यानी कि वैष्णव, शैव और शक्ति तीनों ही परंपराओं का अद्भुत पालन यहाँ पर होता है। बात हम करें भागवत भवन की, तो भागवत भवन की विशिष्ट विशेषता इसकी है जो दृश्य कथा वाचन की परंपरा है। इस भवन के स्तंभों, दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की कथा चित्रित है। बाल रूप के कई प्रसंग हैं, तो कहीं गोप गोपियों के साथ लीला है, कहीं कान्हा का प्रेम है, तो कहीं कृष्ण का ज्ञान। यहाँ की दीवारें भी कथा कहती हैं और स्तंभ मात्र भार नहीं उठाते, उनकी लीलाओं के साक्षी भी बनते हैं। और अचानक बड़े जोर से एक हलचल सी हुई है, कोलाहल से हुई है, ये माइक्रोफोन से आवाज भी जा रही होगी। श्रद्धालु उत्साहित हो गए हैं क्योंकि वो क्षण आने वाला है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह को क्या कहा जाए। उन्हें लगता है कि पुजारी जी थोड़ा सा भी पर्दा हिलाते हैं तो लगता है प्राकट्य हो गया है, जबकि वो क्षण है। और उनके उत्साह में उत्साह मिलाते पूरे जगमोहन में लोग खड़े हो गए हैं, अबीर गुलाल उड़ाकर नृत्य करने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होता है कि वो घड़ी अभी थोड़ी देर में आएगी तो फिर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत वातावरण रोमांचित कर देने वाला है। लोग यहाँ ठिठकते हैं, खड़े होते हैं, ठाकुर जी को निहारते हैं, राधा रानी को निहारते हैं, उनकी छवि आंखों से आंखें मिलती हैं तो अपलक उन्हें देखते रहते हैं और अश्रु बहने लगते हैं, स्वयं रोमांच हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। और देशी और विदेशी पुष्पों से सज्जित सुगंधित ये पूरा वातावरण आज अपने परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है, जहां पर विशिष्ट पूजन अर्चन अपने अंतिम आयाम पर पहुंचेंगे और प्रकटेंगे एक बार फिर आठवें अवतार के रूप में हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने चुना है इस ब्रज धाम को, जहां आकर सभी लोग आनंदित हैं, उल्लसित हैं, उमंगित हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। शास्त्रीय और लोक कलाकारों ने मंच बनाए हुए हैं पूरे मथुरा में, जहां पर वो गीत संगीत से अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, ये वो धराधाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे। यहाँ की रज भी मोक्षदायिनी है, इसे देवता भी पूजते हैं और पूजे भी क्यों ना, क्योंकि ये वही रज है जिसमें हमारे लाला ने जब कभी माता यशोदा से बिलख कर कोई जिद पूरी नहीं की तो उनके आंसू इसी रज में है। हमारे नंद बाबा की गऊओं को चराते समय या फिर सखवा के संग खेलते हुए उनके जो पसीने की बूंदे गिरी तो वो भी इसी रज में है। और एक बार फिर श्रद्धालुओं का प्रवाह फिर जोर से उत्साह से बढ़ गया है, तालियां बजती हुई, उत्साह अपने चरम पर पहुंचता हुआ, भावनाएं ऊंची पड़ते हुई। और अब जबकि वो प्राकट्य का समय नजदीक आने वाला है, आगे का विवरण देने के लिए श्री कृष्ण जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देश दीपक जी। श्रेष्ठ भक्तों के आने का क्रम अचानक से बढ़ गया है और ये मुख्य मंदिर का पर्दा गिरा दिया गया है और भक्तों में एक उत्तेजना, उत्साह, उल्लास, दोनों पैरों पर उछल उछल कर, दोनों हाथ ऊपर कर श्री राधे जय श्री राधे कर रहे हैं। और यहाँ पर सेवायतों ने मुख्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। शास्त्रोक्त विधि से जो भगवान के जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं, जो परंपराएं, उनका पालन किया जा रहा है। और जो मंदिर के ठीक सामने जो विशेष स्थान बनाया गया है, जहाँ पर विशेष जन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं, सभी हाथ ऊपर कर उठा कर नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। बस प्रतीक्षा है उस पल की कि जब ये कपाट खुलते हैं और जो भक्तों का आने क्रम था अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कपाट खुलने की प्रतीक्षा है। यही तो वो पल था जिसको प्रतीक्षा वर्ष पर्यंत करते हैं और आज इस विशेष मौके पर

पल को कैसे गवा दे। सुरक्षा प्रहरी सेवाएं तुम्हें बार बार निवेदन कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि भक्तों का आने क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, संभालना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन भक्तों का उत्साह कहीं कम नहीं हो पा रहा है। और ये पट सब बंद है, जो यहाँ पर सेवाएं हैं पट के बाहर खड़े हुए हैं, उसमें दो मयूर बने हैं, और जो कास्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें पीतल से मोर और नीचे दो मोर नाचते हुए अद्भुत दृश्य है। ये वो बेसब्री की घड़ियां है जिनको इंतजार करना हर एक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बस किसी भी पल ये पट खुलने वाले हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं अपलक निहार रहे हैं कि कब वो घड़ी आए, और जब वो लाला का प्रथम दर्शन करें प्राकट्य उत्सव के बाद, जब लाला बाहर आते हैं उस घड़ी को देखने के लिए निहारने के लिए सभी एकजुट। और ये कपाट खोल दिए गए हैं लेकिन अभी पर्दा नहीं खुला है, भक्तों में उत्साह है। अचानक जैसे राधे का जयघोष हो रहा है, और ये सुंदर पर्दा जिसमें गौ माता बनी है, दो हाथी बने हैं, उसमें एक वृक्ष है, बहुत ही रंग बिरंगे झिलमिल सितारों से ये पर्दा जिसके हटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं भक्त हैं नृत्य कर रहे हैं, और जो यहाँ पर भक्त लोग भजन गा रहे थे अचानक उनके भजन गाने में ढोल झांझ मजीरा मृदंग, और यह पर्दा खुल चुका है, प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर एक रजत कमल है यंत्र चालित, एकदम धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां खुलती हुई, क्रमशः पंखुड़ियां खुल रही हैं, और ये लड्डू गोपाल के प्रथम दर्शन आम भक्तों को सुलभ हो रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, यही दृश्य ऐसा जो सभी अपने नजरों में नेत्रों बसा लेना चाहते हैं। वहाँ पर जो दूसरे सेवाएं थे वो आरती कर रहे हैं, और इसमें प्रथम कल से यहाँ पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त ही नहीं बल्कि भगवान भी स्वर्ग से यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, और सुगंधित द्रव्य वहाँ पर बरसा जा रहे हैं, गुलाब जल की वर्षा हो रही है, पूरा वातावरण सुगंधित हो चुका है। और ढोल झांझ मजीरे मृदंग शंख इनका संवेश्वर अद्भुत रोमांच पैदा कर रहा है, भक्त का ऐसा समूह और शायद कहीं प्रतीत नहीं होता है। और यहाँ पर जो लोग अपने मोबाइल लेकर आए जैसे जन है सभी के मोबाइल ऊपर उठे हुए हैं, और यहाँ के दृश्य अपने मित्रों को अपने परिचितों को अपने परिवारजनों को अपने मोहल्ले में टोले में अपने जनपद में यहाँ के दृश्य वहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, और इसी दृश्य को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर पधारते हैं। और ये कमल जो रजत कमल था उसकी पंखुड़ियां खुल चुकी हैं, वहां पर चल विग्रह लड्डू गोपाल के विराजमान है, उन्होंने पीले वस्त्रों से अपने आप का श्रृंगार किया गया है। और यहां पर जितने भी श्रद्धालु हैं वे सब तालियां बजा बजा कर उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं, और सभी का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक समय तक लड्डू गोपाल को निहार सके। लेकिन जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने नहीं दे रहा है, और इस समय आरती हो रही है, और इस आरती के बाद यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो यहाँ पर सेवाएं हैं बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ भक्त के भाव के साथ अपने शीर्ष पर रखकर बाहर यहाँ पर एक मंच बनाया गया है, जहाँ पर एक रजत स्वर्ण मंडित एक कामधेन व्रत की गई है, जिनके पैदलों से निकली दुग्ध धार से प्रभु का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। और इस समय जो आरती क्रम है वहां पर चल रहा है, और भक्त लगातार आके आते आ जा रहे हैं, और यहाँ पर व्यवस्था की गई ध्वनि विस्तार के यंत्रों से कि जो ढोल मंजीरे शंख की जो अद्भुत ध्वनि है पूरे जन्म स्थान में ही नहीं बल्कि जन्म स्थान के आसपास जो जितना क्षेत्र है सभी जगह पर यहाँ पर ये ध्वनियां बिखर रही हैं, और जगह जगह यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जो भक्त जहां भी है ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। ये मथुरा नगरी जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं, आज तो अद्भुत दृश्य है, अचानक भक्तजन उछल उछल नृत्य कर रहे हैं, और जितने विशेष जन हैं उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा रखा है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं कहीं भीड़ में भगवान का ये अद्भुत दृश्य देखने से वंचित न रह सके। कुछ यहाँ पर दृश्य आए, कुछ ऐसे भी भक्तजन हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल को एक पालने में टोकरे का रूप दिया उन पर लेकर आए हैं, वो भी यहाँ पर दृश्य करा रहे हैं। और जो कृष्ण के विविध रूप हैं, जो राधे राधे का अभिवादन है, चाहे गीता का पठन पाठन हो, युद्ध भूमि में हो, कृष्ण हमारे बीच अनेक रूपों में आते हैं, और आइए चलते हैं देश दीपक।

0: मिश्र के साथ आगे के दृश्यों के लिए।
1: जब सांसों में यमुना बहे और मन वृंदावन हो जाए, जब भीतर का कंस सो जाए और कृष्ण जाग जाए, अंधियारे की कोख से जब उजियारा मुस्काए, समझो उसी क्षण हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए। हो गया है जन्म प्रतीक रूप में हमारे परमात्मा, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य श्री कृष्ण का, हमारे लाला का, हमारे कान्हा का, और उनके इस जन्मोत्सव का साक्षी बनते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ भागवत भवन इस समय पर्याय बन चुका है। प्रेम का, भक्ति का, उल्लास का, उत्साह का, आनंद का, माधुर्य का, उछलते कूदते पीत वस्त्र धारण किए हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का कोई अंत नहीं है। इस समय थोड़े से शिथिल हो गए हैं हमारे प्रशासन के लोग भी, वो शायद वो भी लीन हो गए हैं अपने परमात्मा की उस आराधना में जो इस समय मुख्य पुजारी जी कर रहे हैं। और हालांकि इस शिथिलता में भी वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मैं बहुत ही आसानी के साथ देख सकता हूँ, बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हमारे प्रशासन की एक कर्तव्य विवशता दोनों एक से बने हुए हैं। और इस समय कहते हैं कि इस पूरे भवन में एक अद्भुत वातावरण है, और ये वातावरण सिर्फ यहाँ नहीं, भागवत भवन में नहीं, मथुरा में नहीं, हर घर में नहीं, गोकुल, बरसाना, वृंदावन और नंदगांव में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में हो रहा है। क्योंकि अभ्युत्थान आए अधर्मस्य संभवाम युगे युगे का जय घोष करने वाले हमारे परमात्मा का जन्म हुआ है। लाला ने हमें आश्वस्त किया है कि इस धराधाम पर मेरी उपस्थिति है, तालियां हाथ उठाकर, दोनों हाथों से तालियां बजाकर, करतल ध्वनि करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए एक लय में, एक ताल में, एक धुन में, क्योंकि यहाँ संगीत की लहरियां भी हैं और हमारे परमात्मा गीत संगीत और नृत्य के भी गुणी हैं। यहाँ भगवान के जो विग्रह हैं वो त्रिभंगी मुद्रा में है, यानी कि तीन कोण से हल्के से तिरछे हैं, जो भगवान बताते हैं कि लचीला होना जीवन में कितना आवश्यक है। और ये शैली उनकी ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य में भी मिलती है। भगवान की आंखों से बरसती हुई करुणा, राधा रानी का प्रेम, उनकी निश्चलता, उनका आनंद अभिभूत कर दे रहा है। कहते हैं कि इस धरा पर आने के बाद जन्म सफल होना क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ये गूंगे का गुड़ की तरह है। लेकिन जो आज

0: रहा है। कहते हैं कि इस धरा पर आने के बाद जन्म सफल होना क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ये गूंगे का गुड़ की तरह है। लेकिन जो आज मथुरा नगरी में है, भागवत भवन में है, हमारे इस युगल सरकार के विग्रह के सामने हैं, वो रोमांचित हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि जन्म सफल होना किसे कहते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम भी हैं, सखा भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं और निष्काम कर्म योगी भी हैं। संपूर्ण पुरुष की व्याख्या करते हुए यहाँ पर सभी उनके सामने आनंदित हैं, क्योंकि आज वो संपूर्ण पुरुष नहीं, वो कर्म योगी नहीं, वो एक लाला है, हमारे लाल हैं, हमारे शिशु हैं, जिनके आगमन से सभी आह्लादित हैं। इस भागवत भवन की दीवारों के स्तंभों पर विविध प्रसंग भी अंकित है, कहीं राम जटायु प्रसंग है तो कहीं सती के कटे मस्तक पर दुखी शिव भगवान है। तालियों की गूंज, संगीत के धुन के साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ता हुआ, कृष्ण जन्म का भी प्रतीक बड़े गूढ़ है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं गूढ़ अर्थों को भी लेके आती है। आधी रात को जन्मते हैं कृष्ण जब चारों ओर अंधेरा होता है, और क्रोध का, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधकार का जब भीतर भर जाता है तो अंधेरा होता है, और जब चेतना जन्म लेती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही कृष्ण बनता है। और इस समय पुष्प वर्षा की जा रही है, जहां से हम ये विवरण दे रहे हैं हमारे ठीक थोड़ी दूर पर जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, और ये आगमन है अपनी अपनी खुशियों को। ये जो पुष्प वर्षा हो रही है, ये गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां हैं, श्रद्धालु इन्हें पकड़ रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं और मुट्ठी में बांध रहे हैं, आंचल में बांध रहे हैं, इससे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ले जा रहे हैं। वो अपने घर ले जाएंगे, धरा धाम ले जाएंगे, जहां पर उन्हें लगेगा बाहर से वो कमल आ गया है, रजत कमल, जिस पर कुछ ही देर में विराजमान होंगे हमारे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल बाहर निकलकर आने की तैयारी करते हुए, क्योंकि जो रजत कमल है वो यंत्र चलित है, उसे बैठाया जाता है, बनाया जाता है। इस बीच धूप तेज हो गई है, उत्साह फिर अपनी भावनाओं का उभार आ गया है, अश्रु बहते हैं, रोम पुलकायमान है, आत्मा आनंदित है। लड्डू गोपाल सूप में बैठकर शेषनाग की छत्र छाया में आएंगे और यहाँ पर उनका अभिषेक होगा, जल के बाद दुग्ध अभिषेक होगा, और उसके बाद पंचगव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद महाआरती होगी। ये सब कुछ व्यवस्था यहाँ चलती हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जो एक आनंद है, उस आनंद की कोई ओर छोर कोई सीमा नहीं। सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें दिखते हैं भागवत भवन की दीवारों पर कहीं वेणु वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, तो कहीं नंद बाबा को अजगर से छुड़ाते हुए श्री कृष्ण। अपने कान्हा की लीलाओं को देखकर सब आनंदित हैं। कृष्ण जन्म के प्रतीकों की बात हो रही थी, तो कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। आत्मा रूपी कारागार में जब आ जाती है, शरीर के रूप में आ जाती है आत्मा, तो कारागार होता है जहां उसे अपने प्रारब्ध का हिसाब करना होता है। कृष्ण को जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किसे भय नहीं होता है, ये संदेश बेहद सरल किंतु उतना ही गूढ़ है। हम सबके जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किंतु हम खुद को अमर समझने की भूल कर बैठते हैं, और यही सभी दुखों का मूल है। कृष्ण कहते हैं कि आनंद में रहो, निष्कलंक रहो, निष्कपट रहो, हमें निश्चलता पसंद है, और तभी कृष्ण को आप प्राप्त कर पाओगे। वासुदेव जी की उफनती यमुना में लाला को लेकर जाना भी एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा संकेत है जिसे समझना होगा। उफनती लहरें हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, सुख की लहर, दुख का बहाव, किंतु जब सर पर सत्य यानी परमानंद की कृपा हो तो समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तालियों की गूंज में श्रद्धालु बढ़ते हुए रुकते हुए पीत वस्त्रों में यहाँ पर पुजारी यहाँ पर हैं, और वो पूजन की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कुछ ही क्षणों में लड्डू गोपाल का आगमन होगा, जो कि शिष्य रूप में है, सूप में बैठकर आएंगे, और शेषनाग की छत्र छाया में जो कि रजत कमल में विराजित होंगे, यंत्र चलित है, और वहां पर जो कुछ भी होगा विशिष्ट पूजन अर्चन आगे का विवरण देंगे साथी श्री कृष्ण।
1: धन्यवाद देशभक्त। इस समय भगवान कृष्ण का जो चल विग्रह है उसको बहार लाया गया है, जहाँ पर एक कामधेनु स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर के बाहर दो मंच बनाए गए हैं, एक दाहिनी ओर मंच है, एक बाई ओर। दाहिनी ओर मंच पर ये कामधेनु विराजित है, जो रजत स्वर्ण मंडित और उनके पैदलों से निकली दुग्ध धार से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बाई ओर मंच है वहां पर एक रजत निर्मित विशाल कमल पुष्प, उसके ऊपर जो पंखुड़ियां खुली थी वो पुष्प विराजमान है। अभी यहाँ पर दुग्धाभिषेक के बाद भगवान कृष्ण को इस मंच पर स्थापित किया जाएगा। और जब भगवान यहाँ पर आज प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण के विविध रूप हमारे सामने आते हैं, कहीं प्रेमी रूप में आते हैं, कहीं भक्त केंद्र रूप में आते हैं।

एक महान योगी रूप में नटखट माखन चोर के रूप में आते हैं और ये बाल लीलाएं करते हैं। ये मन को आनंदित करने वाले तो है ही, साथ ही साथ इनसे महान दार्शनिक संदेश भी प्राप्त होते हैं। अगर वो गोप गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं, गुमे चराने जाते हैं, वो भले ही राजा के बेटे थे कुलीन से, लेकिन आम जनमानस के साथ मिलकर कैसे समाज में संदेश देना है, सहजता, निश्चलता, आत्मीय प्रेम, ये सभी संदेश उनके साथ मिलता है। समरसता की बात होती है। और अगर वो काली नाग का दमन करते हैं तो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं। और वहीं साथ ही साथ आजकल किस तरह से नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है, इसका भी कहीं ना कहीं संदेश देता है। और ये उतना ही आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की थी, तो प्रकृति, पशुधन, कृषि, जीवन संरक्षण, सहकारिता, सामूहिक एकजुटता का प्रमाण है कि किस प्रकार से अगर कोई संकट आता है, भले ही देव इंद्र क्यों ना हमारे विपरीत हो, लेकिन हम सबके साथ मिलकर सबके सामूहिक सहयोग से हम इस विपत्ति से पार पा सकते हैं। ये संदेश देना भगवान के कृष्ण का, जो उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था, जो उन्होंने दर्शन दिया है, वो हम सब के लिए एक तरह से प्रसाद हो सकता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के पंचाभिषेक की तैयारी हो रही है। इसमें पंचामृत बनेगा, दूध, घृत, शक्रा, शहद और इन सब के साथ गंगा जल। और यह अभिषेक के उपरांत यहाँ पर रात में 12:40 तक ये होगा, उसके बाद 12:50 पर श्रृंगार आरती हो, और उसके बाद 1:25 से 1:30 तक शयन आरती हो, और प्रातः यहाँ पर आनंदोत्सव होगा। इस समय कान्हा की नगरी में भक्त की हिलोरें उफान पर हैं, और न केवल भागवत भवन में बल्कि पूरी मथुरा नगरी में हर जगह, हर मठ में, मंदिर में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इस समय जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर जो भक्तजन भजन गा रहे थे, उनके साथ साथ तालियां बजा बजा कर नृत्य कर रहे हैं, हाथ उठाकर कर रहे हैं, और ये अत्यंत भावुक क्षण है जब भगवान का, प्रभु का अभिषेक चल रहा है। और यहाँ पर जो विसर्जन बैठे सुरक्षा कर्मी है, वे भी हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ यहाँ पर ऐसे भक्तजन है, इनकी आंखों में आंसुओं का प्रवाह है, अत्यंत भावुक हैं। मैं बात कर रहा था अनेक श्रद्धालु से बात की, जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और अपने परिवारजनों के साथ में आते हैं, और यही मान्यता रहती है कि पिछले कई वर्षों से कुछ आने वाले श्रद्धालु हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रभु उन्हें अपने पास बुला लें। कम से कम आज के दिन जब प्रभु का प्राकट होगा, अजन्मे का जन्म होगा, पालनहार का जन्म होगा, वो यहाँ पर आए। और इस भक्ति के सागर में मैं श्री कृष्ण आप सभी को प्रभु के आगमन की, अजन्मे के जन्म की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और इसी के साथ मैं श्री कृष्ण अपने साथी कमेंटेटर देश दीपक मिश्र, डॉक्टर बीनू खरे और डॉक्टर नित्य गोपाल के साथ आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं।

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை தீனா, பத்ரி ஆகிய படங்களில் இருந்து பாடல்களை கேட்டு ரசித்தோம். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को

0: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कामकाज के नियमों को अंतिम रूप देने, आरक्षण को तर्कसंगत बनाने और जन कल्याण व विकास से जुड़े अन्य मामलों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में भी जानकारी दी, जो 7 सितंबर से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन तथा गुजरात के द्वारका में मुख्य आयोजन हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न मंदिरों को भी इस अवसर पर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने की आशंका है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कल हल्की से तेज बारिश हुई। आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। महिला क्रिकेट में भारत आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करते हुए महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए में पाकिस्तान से भिड़ेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के अपने पहले 2 मैचों में थाईलैंड और हांगकांग चीन के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के बाद पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The 3-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and Senior Judicial Leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India's Justice Suryakant held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries. The discussions were held for strengthening a judicial cooperation among countries, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes and best legal practices of different countries. Prime Minister Narendra Modi will participate in centenary celebrations at Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The centenary celebrations coincide with Teachers' Day, making the occasion particularly significant as the nation honours the contribution

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास के में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ब्रिक्स देशों के प्रमुख मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई

0: देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव विजय मेहरा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने नीदरलैंड में भारत के राजदूत कुमार तुहिन के साथ कल पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण के लिए डच नेशनल इंस्टीट्यूट का दौरा किया। जुलाई में जल शक्ति मंत्रालय के सेक्रेटरी के वी एल कांता की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जल प्रबंधन में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नीदरलैंड का दौरा किया था और गुजरात में कल्पसर प्रोजेक्ट को लेकर तकनीकी बातचीत की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कल हल्की से तेज बारिश हुई। आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वियतनाम के दा नांग में चल रहे पिकबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे दिन भारतीय टीम ने लगातार मैचों में चीन और फिलीपींस को हराकर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टीम का रिकॉर्ड अब तक अजय रहा है। हर्ष मेहता, अर्जुन सिंह, अनिश फ्रोइलन, अमन पटेल, पर्ल अमल साधीवाला, नाओमी अमल साधीवाला, आली इब्राहिम और मिहिका यादव वाली भारतीय टीम ने पहले राउंड ऑफ 13 के मैच में चीन को 4-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Suryakant, held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries. The discussions were held for strengthening of the judicial cooperation among countries, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes and best legal practices of different countries. Prime Minister Narendra Modi will participate in centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The centenary celebrations coincide with Teachers' Day, making the occasion particularly significant as the nation honours the contribution of teachers and educators in shaping generations and strengthening the foundations of society. President Draupadi Murmu will today confer National Teachers Awards to 48 school teachers in New Delhi on the occasion of Teachers' Day. The 48 selected school teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government. The president will also present national awards to teachers and 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. The External Affairs Ministry said 166 Indian nationals have been rescued in Nepal so far after flash floods hit the neighboring country. Briefing the media in New Delhi yesterday, MEA spokesman

0: நெஞ்சம் மறப்பதில்லை கேட்டு ரசித்தீர்கள். இன்னும் சில நாடுகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह कॉमर्स

0: कॉमर्स अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिमी जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वार्सो में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। उन्होंने भारत पोलैंड संसदीय समूह के सदस्यों से भी मुलाकात की और मौजूदा भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त कार्य योजना 2024-28 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की से मुलाकात की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के विषयों के पेपर में गलतियां की शिकायत के बाद दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वी राज्यों बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चैक यू से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The three-day BRICS Chief Justices Foreigners begin in New Delhi. The foreigners brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and Senior Judicial Leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the Foreign Chief Justice of India, Justice Suryakant held a series of

0: இனியராகவும் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகமது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। आज पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन मशहूर शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

0: सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिमी जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल वारसा में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। उन्होंने भारत पोलैंड संसदीय समूह के सदस्यों से मुलाकात की और मौजूदा भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त कार्य योजना 2024-28 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रोदोस्लाव सिकोरोस्की से मुलाकात की। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यो रियो ने कहा है कि राज्य में माहौल शांतिपूर्ण और स्थिर हो गया है। नागालैंड अब तेजी से भारत के बाकी हिस्सों और दुनिया से जुड़ रहा है। राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि आज का नागालैंड कई दशक पहले की तुलना में बहुत अलग है और यहाँ शांति, कनेक्टिविटी और विकास में काफी सुधार हुआ है। भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने अपने ई नाविक पोर्टल पर एक सीफेरर ट्रैकिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये मॉड्यूल ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में भारतीय नाविकों और जहाजों का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाएगा, जिससे समय पर जानकारी साझा करने, तालमेल बिठाने और आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India Justice Suryakant held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries. The discussions were held for strengthening a judicial cooperation among countries, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes and best legal practices of different countries. Prime Minister Narendra Modi will participate in centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The centenary celebrations coincide with the Teachers' Day, making the occasion particularly significant as the nation honours the contribution of teachers and educators in shaping generations and strengthening the foundations of society. President Draupadi Murmu will confer National Teachers' Awards on 48 school teachers in New Delhi on the occasion of Teachers' Day today. The 48 selected school teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government. The President will also present national awards to teachers on 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. The External Affairs Ministry said 166 Indian nationals have been rescued in Nepal so far after flash floods hit the neighbouring country. Briefing the media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randeep Jaiswal said 275 Indian nationals are still missing. He added that 1,907 Indian nationals have safely crossed into Nepal from China. Mr. Jaiswal said India will continue to provide assistance based on the requirements of the government of Nepal.
2: In the wake of this tragedy, we have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal. As a close friend and partner, India responded promptly, and we will continue to support rescue, relief, reconstruction and recovery efforts in the country.
1: Meanwhile, the death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has reached 1,287, with around 5,083 people reported missing. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Polish President Karol Narodski in Warsaw and held discussions on the positive trajectory of the India-Poland strategic partnership. He also met members of the India-Poland Parliament.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே நவீன் சக்சேனா. देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने, उनके चरित्र का निर्माण करने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा विकसित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक्स के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स 2026 में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा वो वेल्लूर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वो समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्षों में इस संस्थान ने कई विद्वानों, पेशेवरों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। शताब्दी समारोह शिक्षक दिवस के अवसर पर हो रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर हैं। वो कल गृह मंत्रालय के विभिन्न विभागों के साथ गोवा से संबंधित मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बाद में वो मादक पदार्थों पर एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। श्री शाह शाम को अटल भवन में नव निर्मित भाजपा राज्य कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। वो पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सोमवार को गृहमंत्री पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक और गोवा पुलिस के राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान में शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रखे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने

0: न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल वारसा में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में आज भारत का मुकाबला होगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।